0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सभी का स्वागत है। ये है वही शो जहाँ पे आने के लिए हम हफ्ते भर का वेट करते हैं, और क्यों हो भी ना, क्योंकि 90s ने हमको यही तो सिखाया है, इंतजार और पेशेंस, राइट? कैसे एकदम हफ्ते में एक बार कोई शो आया करता था और फिर नेक्स्ट एपिसोड का टीजर छोड़ के जाते थे और हमको लगता था अब पूरा का पूरा एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। सो वही फील को वापस लाते हुए पूरे हफ्ते के इंतजार के बाद मस्ती 90s मिक्स टेप और आपकी 90s वाली अंतरा बिल्कुल यहाँ पर हाजिर हो चुकी है। एंड यहाँ पे से अब 3 घंटे हम हिलेंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 90s के उन खजानों में बिल्कुल डूबते हुए जाएंगे, गानों को इंजॉय करेंगे। और भाई पूरा एक जमाना यहाँ पे जो रिवाइंड हम करते हैं भाई 90s में लाइफ कैलेंडर से जो है बिल्कुल नहीं चलती थी, सीजन्स के हिसाब से चलती थी। स्कूल खुलने का सीजन, मैंगोस का सीजन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीजन, नए कैसेट आने का सीजन, दिवाली मूवी रिलीजेस का सीजन और शादियों में सेम सॉन्ग्स बार बार बजने का भी सीजन उस वक्त हर चीज़ का ना अपना टाइम होता था और शायद इसीलिए एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती थी क्योंकि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं थी। आम सिर्फ गर्मियों में फेवरेट मूवी टीवी पे सिर्फ एक दिन, नया एल्बम आया तो पूरी कॉलोनी में डिस्कशन शुरू, और जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होती थी तो उसका असर कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल्स तक पहुंच जाता था 90s का बॉलीवुड भी सिनेमा ही थोड़ी ना था, सिर्फ लाइफस्टाइल का अपडेट हुआ करता था। एक हीरो ने ब्रेसलेट या कोई पेंडेंट पहना, मार्केट भर गया उसी से। हीरोइन ने हेयर स्टाइल बदली, पार्लर्स बिजी हो गए। एक गाना हिट हुआ, पूरा साल वही बचता रहा, और इसी बीच में हम अपनी छोटी छोटी दुनिया भी जो है वो जी लिया करते थे, स्कूल बैग से, गली क्रिकेट से, ऑडियो कैसेट से, टीवी सीरियल से, समर वेकेशन से, और वो हजार छोटी बातें जो उस वक्त नॉर्मल सी लगती थी और आज प्राइसलेस लगती है। तो चलिए फिर से खोलते हैं यादों का वो पिटारा जहां मेमोरी के साथ भी जुड़ा हुआ है 90s वाले गाने, और हर गाने के साथ होती है एक कहानी। यह मस्ती 90s मिक्सटेप, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: आपको पता नहीं लेकिन मेरा तो बड़ा ही गुम हुआ करता था ये उस टाइम पे, और आई एम श्योर दैट मेरे जैसे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बात को काफी रिलेटेबल जो है फील कर पाएंगे। वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के स्कूल बैग्स में एक चीज, बैग्स में भी नहीं, पूरा जो किट था उसमें एक ऐसी चीज थी जो काफी एडवेंचरस हुआ करती थी ना, ये पेंसिल, ना मैं इरेजर की बात कर रही हूँ, स्केल नहीं नहीं नहीं नहीं, वाटर बॉटल का कैप, दैट इज राइट भाई, वो जो मिल्टन की हमारी ब्राउन कलर की, ब्राउन और बेज का एक बड़ा ही मिक्स हुआ करता था जो कि स्टैंडर्ड था। ओके, कलर्स तो बहुत बाद में आए हैं, जिसकी स्ट्रैप हमेशा परमानेंटली गीली ही गीली रहती थी, लाइक फॉर सम रीजन है ना, रहती थी ना। बट कमिंग टू द कैप, ओके सीरियसली आज तक समझ में नहीं आया वो कैप आखिर ज्यादा कहाँ था। स्कूल साल की शुरुआत में बॉटल फुल कंप्लीट, ठीक है, बॉटल भी, कैप भी और स्ट्रैप भी, सब परफेक्ट। फिर धीरे धीरे पहले स्ट्रैप टूटा, फिर बॉटल पे स्क्रैचेस आ गए और एक दिन कैप ऑफिशियली मिसिंग हो गया। एंड फनी थिंग इज किसी ने उसे चोरी नहीं किया, किसी ने जान बूझ कर नहीं हटाया, वो बस गायब हो जाता था जैसे उसकी अपनी कोई सीक्रेट लाइफ हो। फिर होते थे जुगाड़ शुरू, ठीक है, कोई दूसरी बॉटल का कैप ट्राई करो, कोई प्लास्टिक कवर बांध दो, कोई सीधी रखो वरना बैग में पूरा सब कुछ गीला हो जाएगा, और अक्सर हो भी जाया करता था, मतलब नॉट अ बिग डील, राइट। और वो कलरफुल प्लास्टिक के बॉटल्स याद है आपको, उसके रेड कैप, ब्लू कैप, ग्रीन कैप, कार्टून स्टिकर वाले, कभी मिल्टन कभी लोकल मार्केट वाले, पूरा स्कूल पर्सनैलिटी जो है बॉटल से भी जज किया करता था। और लंच ब्रेक में बॉटल भी सोशल लाइफ अपनी जी ही लेती थी, नहीं सब एक दूसरे की बॉटल से पानी पी रहे हैं, कोई बॉटल एक्सचेंज चल रहा है, कोई फ्रिज जैसा ठंडा पानी लेकर, मतलब वो तो इसको एकदम सुपरस्टार बन जाता था वो बंदा या बंदी। आजकल ये जो है ना, वो है क्या कहते हैं उसको, स्टैनली करेक्ट, याद ही नहीं आता, हमेशा मैं भूल जाती हूँ भाई, इतने कमाल फैंसी, कितने महंगे, साथ साथ में लीक प्रूफ लिड्स है, एडवांस्ड लॉक्स है, एंड तब बॉटल और कैप का रिलेशनशिप ही इतना अनस्टेबल हुआ करता था। लेकिन फिर भी काम तो सर एंड मैडम चल जाया करता था, क्योंकि 90s में चीज़ें परफेक्ट नहीं होती थी, पर स्टोरीज बहुत देती थी। ऑनेस्टली अगर 90s स्कूल आइटम्स का रीयूनियन हो ना, सबसे ड्रामेटिक एंट्री आई थिंक वाटर बॉटल कैप की ही होगी। सब पूछेंगे इतने सालों से कहाँ छुपा बैठा था रे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, चलिए ये सारी 90s की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ में चलते रहने चाहिए 90s के गाने भी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
2: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
2: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
0: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है मेरे दोस्त, क्यों क्यों? ना ना ना ना, मैं वहाँ वाले मेलोडी की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग 90s में है। ओके ओके भाई, 90s के बच्चों ने पेशेंस पे कोई मोटिवेशनल बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये एक चीज ने हमको पेशेंस जरूर सिखाया था, मेलोडी टॉफी। If you remember, अगर नहीं है तो याद अभी आ जाएगा। So, आज के चॉकलेट्स तो पहले ही बाइट में, you know, जो भी सरप्राइज देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन मेलोडी ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही सस्पेंस था सबको। एक तो you know, उसकी पैकेजिंग इतनी अल्टीमेट, राइट? अगेन द ब्राउन्स वी आर गोइंग इनटू, द गोल्ड एंड द ब्राउन रैपर, एंड सिर्फ एक तरफ से ही वो टॉफी वाला फोल्ड रहना, एंड यू नो यू कैन पिक्चर इट, राइट? एंड उसमें डार्क ब्राउन कलर से लिखा हुआ कर्सिव में मेलोडी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एनीवेज, उसके कलर्स दो डिफरेंट होते थे, अंदर चॉकलेट कैरमेल और अंदर एकदम चॉकलेट वाला। तो वेल, सबको पता था अंदर चॉकलेट है, लेकिन कब आएगी यही तो मिस्ट्री थी। टॉफी को मुंह में डाला, ठीक है, और फिर जर्नी शुरू होती थी, पहले कैरमेल, फिर कैरमेल, फिर और कैरमेल, और दिमाग में बस एक ही सवाल कि अब आएगा, अब नहीं नहीं, और फिर अचानक चॉकलेट सेंटर, ऐसी विक्ट्री फीलिंग जैसे ट्रेजर हंट कंप्लीट हो गया हो। एंड द फनी थिंग इज, कई बार इंपेशेंस में लोग डायरेक्टली जो है इसको बाइट मार देते थे, लेकिन जो मेलोडी खाने वाले असली एक्सपर्ट्स, ओके, एक्सपर्ट्स वेट करते थे, क्योंकि हमें पता था जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। और मेलोडी का एडवर्टाइजिंग मैजिक भी कमाल का था, पूरे देश को एक ही सवाल पे यू नो पूछने पे मजबूर कर दिया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्योंकि दोस्त उधर तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है, ओके आज भी हम ये लाइन सुनते हैं तो स्माइल आ जाती है। 90s में चॉकलेट्स और टॉफीज सिर्फ स्नैक्स नहीं थे मेरे दोस्त, उनके साथ कहानियां भी जुड़ी हुई थी, कैरेक्टर्स थे, जिंगल्स थे, एंटिसिपेशन था। आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, क्लिक करो सब कुछ मिल गया, ऑर्डर करो आ गया, तब बेस्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता था, और शायद इसीलिए उसका मजा भी ज्यादा था। मेलोडी ने हमें एक छोटी सी लाइफ लेसन दी थी, बिना लेक्चर दिए, बिना स्पीच दिए, कि कभी कभी सबसे अच्छा पार्ट शुरुआत में नहीं मिलता, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली आज भी अगर मतलब ऐसे कोई मेलोडी हाथ में दे दे, तो अंदर से वो 90s वाला बच्चा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कि देखते हैं सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, ओह माय गॉड, समहाउ आई क्रेव मेलोडी जो है नाउ कोई तो खिला दो। ओके, लेट्स मूव ऑन, स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
4: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
5: दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, शक्ति एंड अक्षय कुमार।
4: From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
6: Welcome to the jungle.
4: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
7: Trailer khatam, paisa hajam.
8: मेटल की सीढ़ियां ही क्यों, ये तो मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ। यहां पर भाई 90s के बॉलीवुड के विलन्स जो है बहुत टैलेंटेड होते थे, लेकिन एक चीज में उनकी चॉइस सरप्राइजिंगली अगर आप आज नोटिस करें तो सिमिलर हुआ करती थी। चाहे स्मगलर हो, डॉन हो, गैंग का लीडर हो, या इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, सबके हाइड आउट में ये चीज कॉमन थी, मेटल की सीढ़ी या वो ठक ठक ठक ठक करके आवाज जो होना। सीरियसली आपने शायद नोटिस ना किया हो, हीरो विलेन को ढूंढते ढूंढते किसी वेयर हाउस में पहुंचता था, और वहां ड्रम्स, चेन्स, डिन सी लाइटिंग और एक बड़ी सी मेटल की स्टेयरकेस, मतलब अगर सीढ़ियां नहीं है तो अड्डा ऑफिशियली कंप्लीट ही नहीं हुआ। और इसका एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था। सो 90s के एक्शन डायरेक्टर्स को मेटल स्टेयरकेसेस बहुत ज्यादा पसंद थे, क्योंकि उनसे सीन इंस्टेंटली काफी ड्रामेटिक लगता था, हाइट मिल जाती थी पूरे सीन को, मल्टीपल लेवल्स मिल जाते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एको, हीरो के फुटस्टेप्स ठक ठक ठक पूरे हॉल में गूंज जाते थे, एंड ऑडियंस को लगता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला, तो मतलब माहौल जो है वो बन गया। और फाइट सीन्स, ओ माय गॉड, कोई रेलिंग से टकरा रहा है, कोई सीढ़ियों पे गिर रहा है।

कोई ऊपर से जंप कर रहा है, एक स्टेयरकेस पूरे एक्शन सीक्वेंस का सपोर्टिंग एक्टर बन जाया करता था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज विलन्स का एक्चुअल बिजनेस क्या था ये कभी क्लियर ही नहीं होता था सच्ची में। लेकिन उनके पास जायंट वेयर हाउस और मेटल के स्टेयर जरूर होते थे। आज के फिल्म्स में स्लीक ऑफिसर्स, ठीक है, सीक्रेट बंकर्स बनाए हुए हैं, हाईटेक लोकेशंस। तब मेटल स्टेयरकेस की डेंजर का ऑफिशियल का एक सिग्नल हुआ करता था। एंड ऑनेस्टली जस्ट मोमेंट स्क्रीन पे वो स्पाइरल सा या फिर इंडस्ट्रियल स्टेयरकेस दिख जाए, हमें पता चल जाता था कि क्लाइमैक्स बड़ू दूर नहीं है। 90s के एक्शन फिल्म्स आज भी इतने ही एंटरटेनिंग इसी वजह से लगते हैं क्योंकि उन्होंने डेंजर को सिर्फ कैरेक्टर से नहीं आर्किटेक्चर से भी क्रिएट किया था। आज भी कोई भी ऐसी 90s की मूवी उठा के देख लो ना, ऐसे ऑटोमेटिकली वो स्टेयरकेस ऐसा रिजेम्बलेंस मारेगा ना कि अरे ये तो अंतरा ने बात की थी, ये तो वही वाले स्टेयरकेस है। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही और बातें बिल्कुल करेंगे, लेकिन 90s के गाने सुनते हुए

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: ये तो बहुत ही हिलेरियस है क्योंकि मैं आज की डेट में भी सेम टू सेम करती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूँ 90s वाली आंत्रा, यहाँ पर आपके साथ। भाई 90s के घरों में एक काम ऐसा था जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता था बट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता था। देखिए, एक तो ऑलरेडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ फ्रिज इन द हाउस हमने देखा हुआ है बिकॉज वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इट हमारे रहते रहते, एंड इट वॉज ये गैजेट देखकर ही हमें मतलब ये ठंडा कर देता है, इसमें बर्फ जम जाती है, ओ माय गॉड। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि मोहल्ले की दूसरी आंटियों के घर में जाए, मतलब हर किसी के घर में नो बडी कुड अफोर्ड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब नया नया आया था, तो अक्सर दही खराब ना हो जाए या कोई खाना खाने की चीज़ जो है ना वो खराब ना हो जाए, और अगर आपका फ्रिज छोटा है या फिर आपके पास फ्रिज है ही नहीं तो बगल वाले घर में जाकर उनके यहाँ पे रखवा दिया करते थे हम लोग सामान। आजकल के रेफ्रिजरेटर्स में जैसे आइस डिस्पेंसर वगैरह है, बट फ्रिज से आइस ट्रे निकाल के बर्फ निकालना, ओहो हो हो भाई, अभी क्या है, बटन दबाओ आइस आ गई, तब पहले फ्रीजर खोलो फिर ट्रे बाहर निकालो, और फिर होता था असली मैच शुरू, क्योंकि बर्फ ट्रे से आसानी से निकलती ही नहीं थी। सबका अपना अपना टेक्निक होता था। सो मेरा टेक्निक जो मैं तभी भी करती थी और आज की डेट में भी मुझे वही सही लगता है, ट्रे को हल्का सा ट्विस्ट करो तो सारे बर्फ जो है ना अलग अलग करके बाहर आ जाते हैं। सो वो एक हुआ करता था। कोई किचन के स्लैब पे हल्का सा टक टक करता था या जोर जोर से ठाक ठाक ठाक ठाक करके मारा करता था, कोई पीछे से प्रेस करता था, कोई ट्रे को हवा में यूं हिलाता था, और हर एक्सपर्ट का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हुआ करता था कि मुझे दो मैं निकालता हूँ। और फिर एक क्यूब निकला, दो निकले, तीसरा सीधा फ्लोर पे। पूरा ऑपरेशन रीस्टार्ट। बर्फ चाहिए भी बस एक या दो ही क्यूब्स होती थी, लेकिन ट्रे के साथ स्ट्रगल ऐसा जैसे माइनिंग कोई ऑपरेशन चल रहा हो वहां पे। समर वेकेशंस में तो ये डेली एक्टिविटी थी, रसना के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए, कोल्ड कॉफी के लिए, ये बस पानी ठंडा करने के लिए बर्फ निकाल दो। और वो ओल्ड स्कूल वो प्लास्टिक के आइस ट्रेज आपको याद है, वो ब्लू कलर के, वाइट कलर के, थोड़ा सा बेंड करो तो क्रैक होने का डर भी रहता था, लेकिन फिर भी सालों चलती थी। 90s में सिंपल काम भी प्रोसेस हुआ करते थे दोस्त, और प्रोसेस में कहानियां बनती थी। आज कन्वीनियंस ज्यादा है, तब टेक्निक ज्यादा थी, और हर घर में कोई ना कोई आइस ट्रे एक्सपर्ट जरूर होता था। 90s के किचन की मेमोरीज भी कितनी यादगार सी लगती है ना, क्योंकि वहाँ हर छोटी चीज में थोड़ा सा स्किल लगता था, थोड़ा एटीट्यूड भी लगता था, एंड ऑनेस्टली यू नो आई जस्ट मिस दोज डेज कम्प्लीटली, दे वर सिंपल राइट। इसीलिए आज तक आदतें भी वैसी बनी हुई है, ट्विस्ट कर दो आराम से, इट वर्क्स ब्यूटिफुली, यू नो दैट राइट। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: देखा तो आपने कई बार होगा और सोचा भी होगा कि ये होता क्यों है, मतलब why is it there, why does it happen, what am I talking about, let me tell you. Welcome back, Masti 90s mixtape चल रहा है रेडियो Masti 24/7 लाइव पर। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर। 90s के बच्चों को एक चीज देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी और आज के बच्चे शायद इसको कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि जब टीवी ऑन करो और स्क्रीन पे आ जाए वो रेनबो वाले कलर बार्स। अरे वाह। ना, कोई कार्टून नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई सीरियल नहीं, बस रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और बाकी कलर्स की वर्टिकल लाइंस। लेकिन फिर भी हम स्क्रीन के सामने यूं ही बैठे रहते थे क्योंकि हमें पता होता था अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना, पता होता था ना। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि ये कलर बार्स सिर्फ ऐसे ही डेकोरेशन के लिए है, लेकिन एक्चुअली टीवी स्टेशंस उन्हें ब्रॉडकास्ट सिग्नल टेस्ट करने के लिए यूज किया करते थे। इंजीनियर्स ना उन कलर्स और ऑडियो टोन की मदद से पिक्चर की क्वालिटी, कलर बैलेंस और ट्रांसमिशन जो है उसको चेक किया करते थे। मतलब वो कलरफुल स्क्रीन एक तरह का टेक्निकल हेल्थ चेकअप था। लेकिन बचपन में हमें क्या पता, राइट? हम तो बस इतना जानते थे कलर बार्स अगर आ गए हैं तो कुछ अच्छा स्क्रीन पे आने वाला है, और उस वक्त वेटिंग भी एंटरटेनमेंट का पार्ट था। सो टीवी ऑन किया, प्रोग्राम तुरंत स्टार्ट नहीं होता था और शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट बिल्ड होती थी। जैसे सिनेमा हॉल में पहले लाइट्स डिम हो गई, वो वाली फीलिंग, जैसे कैसेट प्ले करने से पहले रिवाइंड की आवाज, एक्सपेक्टेशन का भी अपना ही मजा होता था 90s में। ऑनेस्टली कलर बार्स देखते देखते हम कलर्स भी याद कर गए और कभी कभी तो टीवी के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए पापा भी वही यूज करते थे कि नहीं यार ज्यादा लग रहा है। आज स्ट्रीमिंग एप्स इंस्टेंटली प्ले हो जाते हैं, राइट? नो वेटिंग, नो बिल्डअप, नो कलर बार्स। तब प्रोग्राम से पहले भी प्रोग्राम जैसा एक्साइटमेंट हुआ करता था दोस्त। और ये बातें करते करते जो हम ऐसे गोते खाते रहते हैं ना 90s में, ऐसा लगता है कि जस्ट हमारी जिंदगी का ही कोई रिवाइंड बटन जो है ना वो वापस से दबा दे और हम वापस से उस माहौल में चले जाएं। बट कोई नहीं, हमारा मस्ती 90s मिक्स टेप इस शो का कुछ काम ही ऐसा है कि हम अपने इमेजिनेशन में उस दौर से थोड़ा सा घूम कर वापस आ जाते हैं। रियलिटी में भी तो रहना उतना ही है, नहीं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए कुछ 90s वाले गाने सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: पर्दे उड़ रहे हैं, पर्दे उड़ ही रहे हैं और उड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि वही सीन को अच्छा बना रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूं अंतरा, यहां पर 90s वाली आपके साथ। 90s बॉलीवुड का रोमांस भी कितना कमाल का था ना दोस्त। आजकल लोग रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पर, तब डायरेक्टर्स एक ही चीज दिखा देते थे, बड़े बड़े सफेद पर्दे उड़ रहे हैं और ऑडियंस तुरंत समझ जाती थी कि हाँ जी हाँ जी यहाँ प्यार चल रहा है। याद करिए, हीरो और हीरोइन एक बड़े से रूम में, ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक, और अचानक वो जॉइंट व्हाइट कर्टन्स हवा में डांस करना शुरू हो जाते हैं। कभी हीरो कर्टन के पीछे, कभी हीरोइन कर्टन के आगे, कभी दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली पर्दे भी उस गाने के सपोर्टिंग एक्टर्स लगते थे। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात भी ये है दैट 90s में बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग स्टूडियो सेट्स पे शूट किया जाता था। उनको नेचुरल लोकेशंस हर बार पॉसिबल नहीं हो पाते थे, तो फिल्म मेकर्स मूवमेंट और विजुअल ब्यूटी क्रिएट करने के लिए लार्ज फ्लोइंग कर्टन्स यूज किया करते थे। पर्दे हवा में मूव करते थे और कैमरा को फ्रेम में जो है डेप्थ और सॉफ्टनेस एट द सेम टाइम मिल जाया करती थी। सिंपल सेट भी ड्रीमी सा लगने लगता था। और फिर इंडस्ट्रियल फैंस का मैजिक तो आपको बताया ही था मैंने। ऑफ कैमरा दो तीन बड़े बड़े फैंस फुल स्पीड पे चला करते थे और ऑन कैमरा रोमांस ही रोमांस। रियल लाइफ में अगर घर में इतनी हवा चल रही होती तो मतलब लोग आंखें बचाते हैं, राइट? लेकिन बॉलीवुड में बाल परफेक्ट, मेकअप परफेक्ट, पर्दे परफेक्ट, गाना तो सुपर परफेक्ट। 90s के फिल्म मेकर्स के पास CGI नहीं था दोस्त, है ना, लेकिन क्रिएटिविटी काफी सारा थी। एक कर्टन, एक फैन, एक मेलोडी एंड पूरा रोमांटिक एटमॉस्फेयर तैयार मेरे दोस्त। इसीलिए आजकल भी 90s के कोई भी लव सॉन्ग्स आप देख लो, इतने ड्रीमी लगते हैं कि क्या ही बताऊं। पहला पहला प्यार है, पहली पहली, पता नहीं अचानक से ये गाना कहां से याद आ गया। चलो यही सुन लेते हैं साथ में ऑन रेडियो 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: नाइन्टीज में फन का भी अपना ही तरीका हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं 90s वाली अंतराप के साथ यहाँ पर 90s के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ज्यादा चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी एक रबर बैंड तो कभी एक पेपर प्लेन और कभी स्कूल बुक्स पे लगने वाले ट्रांसपेरेंट कवरिंग प्लास्टिक के बबल्स। वाह वाह, क्या ही याद आ गया बात करते करते। सो नई बुक्स के कवर होकर जब आते थे, ब्राउन पेपर उस पे लग गया, ठीक है, ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लग गया, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हमारी नजर कंटेंट पे नहीं जाती थी, बबल पे जाती थी। और बस फिर क्लास के बीच में, होमवर्क के बीच में या फ्री पीरियड में मिशन शुरू, थंब से उसको प्रेस करो, पॉप, और एक और पॉप। फिर पूरा कंसंट्रेशन उसी पे जाता था। टीचर बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हम अपनी अलग ही दुनिया में बबल्स पॉप हो रहे हैं वहां पे, सब सेकेंडरी हो जाया करता था। बबल डिस्ट्रक्शन प्राइमरी, एकदम फोकस वहीं पे। एंड बबल जितना छोटा होता था उसे फोड़ने में उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। याद आया आपको, जैसे कोई सीक्रेट अचीवमेंट हमने अनलॉक कर लिया हो। सो 90s में डिस्ट्रैक्शंस भी कितने सिंपल होते थे। मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो खुद ही लग रहा है ऐसा। आज नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तब एक हवा का छोटा सा बबल डिस्ट्रैक्ट कर दिया करता था। एंड कई बार वो बबल एक्सीडेंटली बन जाता था कवर लगाते वक्त, लेकिन बच्चों के लिए तो वो डिफेक्ट है ही नहीं, बोनस फीचर था। यहाँ जो है कुछ और भी, मतलब साथ साथ में बात कर रही हूँ तो याद आया कि एक बोनस फीचर था कि बुक कवरिंग का पूरा रिचुअल खुद एक इवेंट वैसे भी हुआ करता था 90s में। स्कूल खुलने से पहले घर में न्यूज़पेपर और ब्राउन पेपर, लेबल्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक निकालते थे, पेरेंट्स बुक कवर करते थे और बच्चे साइड में बैठकर बबल्स इंस्पेक्ट करते थे। आज रेडीमेड कवर्स मिल जाते हैं, तब बुक कवरिंग भी स्कूल प्रिपरेशन का ऑफिशियल सीजन हुआ करता था। इसीलिए हम 90s का बचपन इतना स्पेशल लगता है क्योंकि हमारी यादें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है ना उससे। इट्स द टाइम वी हैव स्पेंट विद आर पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक ए क्वालिटी मोमेंट एंड टाइम। एंड हम एंटरटेनमेंट ढूंढते ही नहीं थे, हम एंटरटेनमेंट खुद ही बना लेते थे। एक बबल, एक पेंसिल, एक रूलर, बस काफ़ी हमारे लिए। ओ गॉड, आज भी बबल्स फोड़ने में बड़े मज़े आते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. Seven, five, seven, five, seven, five, seven.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूँ 90s वाली आंत्रा, यहाँ पर आपके साथ। और भाई 90s में अगर टीवी खराब हो जाता था ना, तो पूरे घर का मूड ऑफ हो जाया करता था, क्योंकि उस वक्त आई थिंक 90s में टीवी सिर्फ एक गैजेट नहीं था, घर का एंटरटेनमेंट मिनिस्टर था वो मिनिस्टर। और जब वो मिनिस्टर स्ट्राइक पर चला जाए तो तब बुलाए जाते थे टीवी रिपेयर वाले भैया जी। और वो हमारे भैया जी जो है वो अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर आते थे। ना इनके पास होता था लैपटॉप, ना कोई डायग्नोस्टिक सी मशीन, ना कोई फैंसी इक्विपमेंट, बस एक झोला, ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर, और चेहरे पे वो एक्सप्रेशन की हाँ जी चलो मैं देख लेता हूँ। टीवी खराब होते ही एक तो घर वाले ना 20 थ्योरीज जो है वो बना लेते थे कि पिक्चर गई है, साउंड गया है, कलर उल्टा हो गया है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, सब पैनिक मोड पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिपेयर वाले भैया जी आते ही टीवी के साइड पे दो देते थे टाप टाप। पीछे का कवर खोलते थे, थोड़ा सा वायर हिलाते थे, और कभी कभी तो टीवी वापस चल भी पड़ता था। उस मोमेंट पे लगता था कि ये इंजीनियर नहीं, ये कोई जादूगर है। उस वक्त ना 90s के टाइम पे बहुत सारे टीवीज के कंपोनेंट लेवल जो है रिपेयर होते थे, मतलब पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं होता था, टेक्नीशियंस एक्चुअल सर्किट बोर्ड्स पे काम करते थे, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और छोटे कंपोनेंट्स जो है वो चेंज करते थे। इसीलिए एक अच्छा टीवी रिपेयर टेक्नीशियन पूरे एरिया में काफ़ी फेमस हुआ करता था कि वो भाई मेरे घर में, हमारे घर में आया था, उसने तो एक बार में बेंजी ठीक कर दिया, मतलब आप ज़रा बताएंगी, मतलब उसी को बुलाते हैं फिर। और आजकल टीवी खराब हुआ तो सर्विस सेंटर, तब मोहल्ले वाले अंकल या भैया जी, और सबको उनका नाम भी पता होता था कि भाई वो राजू भैया को बुला दो, रफीक भाई को फोन कर दो। पूरा एरिया भी रिकमेंडेशन देता था। 90s का नेबरहुड इतना कैसा कनेक्टेड सा था ना, हर काम के लिए एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट जो है हमेशा फिक्स हुआ करता था। टीवी रिपेयर वाले भैया जी, साइकिल रिपेयर वाले भैया जी, वॉच रिपेयर वाले अंकल, सब अपने अपने सुपर हीरोज, राइट। और जिस दिन टीवी रिपेयर अंकल के हाथ लगते ही स्क्रीन वापस ऑन हो जाती थी, उस दिन लगता था मार्वल का असली ओरिजिन तो यहीं से शुरू हुआ है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर भाई मैं बता रही हूँ, मैजिक ही था हमारे लिए सब कुछ। फिलहाल गाने भी एकदम अमेजिंगली मैजिकल, ओनली ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle camp madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: Singapore, bored ho, game khelni hai. चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
6: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151 8963.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वापस आ चुके हैं मस्ती 90s मिक्स टेप की गाड़ी को अब बढ़ाते हैं और आगे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s के बच्चे इंजीनियर्स तो नहीं थे, लेकिन इनोवेशन में किसी से हम कम भी नहीं थे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ पता क्या था? क्रिकेट बॉल पे टेप लगाना। ऑल द बॉयज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? हमने भी गली क्रिकेट खेली है, हमें भी ये पता है। सो नॉर्मल टेनिस बॉल से खेलना एक अलग बात हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन किसी ने इलेक्ट्रिकल टेप निकाल ली, उस दिन मैच का लेवल ना अपग्रेड हो जाया करता था। पूरा ऑपरेशन बड़े सीरियस मोड में होता था। बॉल लाओ, टेप लाओ और फिर केयरफुली उसकी रैपिंग शुरू करो। कोई हाफ बॉल कवर करता था, कोई पूरी बॉल, कोई ब्लैक टेप, कोई रेड टेप, जैसे वर्ल्ड कप के लिए इक्विपमेंट प्रिपेयर हो रहा हो। और फिर अनाउंसमेंट की आज टेप बॉल से मैच होगा। बस सब बॉलर्स के अंदर वो वकार यूनुस और श्रीनाथ वाले जो है सब एक्टिवेट हो जाते थे, क्योंकि टेप लगते ही हमें लगता था बॉल अब डबल स्पीड से जाएगी। ऑनेस्टली कई बार जाती भी थी। यहाँ एक बात कुछ ऐसी कि टेप बॉल बेसिकली क्रिकेट साउथ एशिया में इतना पॉपुलर हुआ कि इसने अपनी एक अलग क्रिकेट कल्चर क्रिएट कर दी। टेनिस बॉल पे टेप लगाने से बॉल थोड़ी हैवी और स्मूथ जो है वो हो जाती थी, जिससे पेस और स्किट दोनों बढ़ जाते थे। इसी टेप बॉल कल्चर से बहुत से फास्ट बॉलर्स ने अपने रिफ्लेक्सेस और बॉलिंग स्किल्स को डेवलप किया हुआ है नाउ। लेकिन कॉलोनी क्रिकेट में साइंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस का वहां पे रोल होता था। टेप लगते ही बॉलर की रन अप लंबी हो जाती थी, अपील लाउड हो जाती थी और एटीट्यूड इंटरनेशनल लेवल का। सो 90s के बच्चे हर चीज को कस्टमाइज करते थे। साइकिल को मॉडिफाई कर दो, पेंसिल डेकोरेट कर दो, कैसेट को डेकोरेट कर दो, मिक्स टेप बना दो, बॉल को अपग्रेड कर दो, कुछ भी स्टॉक कंडीशन में नहीं चलता था। 90s का बचपन कितना ही क्रिएटिव था यार, क्योंकि हम चीजें सिर्फ यूज नहीं करते थे ना, उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश भी किया करते थे। सच्ची क्या खूबसूरत से थे 90s के वो दिन। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए वो दिन याद करते करते गाने सुनते हैं।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: वो तो
4: क्यूट है ना?
3: अरे पहलवान है,
4: पर तुमसे प्यार करती है।
3: हो नहीं सकता।
4: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
3: हो नहीं सकता।
4: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
3: ये हो नहीं सकता।
5: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: स्टाइल मारना तो हमें पूरा का पूरा बॉलीवुड नहीं सिखाया है 90s में, दैट इज फॉर श्योर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s बॉलीवुड के हीरोज में एक क्वालिटी जो कॉमन मुझे लगी, उनके पास सुपर पावर्स ऑफिशियली तो नहीं होती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल सुपर हीरो से भी ऊपर वाला होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मूविंग ट्रेन्स पे चढ़ना है ना, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, स्पीड पकड़ रही है, प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा, छोड़ देगा भाई, अगली ट्रेन का वेट करेंगे। लेकिन 90s के हीरो नहीं नहीं नहीं, वो जी फुल स्पीड में भागेगा, एक हाथ से रेलिंग पकड़ेगा और स्टाइलिश तरीके से ट्रेन में चढ़ जाएगा, जैसे डेली वार्म अप का एक्सरसाइज में वो यही करता हो। ये सीन ऑलमोस्ट हर दूसरी फिल्म 90s में जो है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। कभी हीरो हीरोइन को रोकने जा रहा है, कभी घर से भाग रहा है, कभी विलेन का पीछा कर रहा है, लेकिन ट्रेन जरूर चल रही होती है इसमें। यहाँ कुछ ऐसा भी है कि आजकल ऐसे सीन्स जो है ना उसमें CGI और विजुअल इफेक्ट्स का काफी यूज होता है, लेकिन 90s में बहुत सारे ट्रेन सीक्वेंस प्रैक्टिकली जो है शूट किए जाते थे, प्रोफेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स कंट्रोल्ड ट्रेन स्पीड्स और डिटेल्ड प्लानिंग के साथ। मतलब जो सीन स्क्रीन पे एफर्टलेस लगता था उसके पीछे काफी प्रिपरेशन होती थी। लेकिन बचपन में हमें क्या पता है ना, हम तो बस हीरो को देख के इंप्रेस हो जाते थे और फिर अगले दिन स्कूल में डिस्कशन शुरू की, और ये देखा एकदम लास्ट सेकंड में उसने क्या ट्रेन पकड़ी उसने। बॉलीवुड का लॉजिक ही कमाल का था, राइट? ट्रेन चल रही है ना, हीरो भाग रहा है, बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक चल रहा है, हीरो का हेयर स्टाइल फिर भी परफेक्ट है। साइंस थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पे जरूर हो जाएगा, लेकिन ऑडियंस बड़ी खुश होती थी इससे। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे ना 90s के हीरोज, इतने ज्यादा इसीलिए तो मेमोरेबल लगते थे, वो उन्हें ड्रामेटिक बना देते थे एकदम सॉलिड वाला, इसीलिए 90s के लोग उनमें भी ड्रामा कूट कूट के भरा हुआ है कंप्लीटली। अग्री करते हो ना आप, है ना? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, बस कुछ देर और बने रहिए, सुन लेते हैं 90s के नगमे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
4: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
5: दिशा पत्नी, जैकलिन फर्नांडिस, शक्ति एंड अक्षय कुमार।
4: From laugh out loud moments to larger than life jungle camp madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
6: Welcome to the jungle.
4: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
7: Trailer khatam, paisa hajam.
8: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: आई नो, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा ब्रो, करना पड़ेगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा था मस्ती 90s मिक्स टेप। और यहाँ जो है, इट वाज ऑलवेज अ खूबसूरत सफर। जब जब मैं ये शो करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, कितना सब कुछ हमने याद किया। नहीं, स्कूल के वाटर बॉटल का कैप जो शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में खो जाता था, वो मेलोडी टॉफी जहाँ चॉकलेट सेंटर तक पहुँच कर भी जब हम पहुँचते थे तो ऐसा लगता था अचीवमेंट हो गई हमारी। कोई आइस ट्रे से बर्फ निकालने का ओलंपिक लेवल का टेक्निक टेस्ट हमारा, वो टीवी के कलर बार्स जो प्रोग्राम से पहले एक्साइटमेंट क्रिएट किया करते थे, वो जायंट कर्टन्स जो हवा के साथ रोमांस को भी उड़ा के लेकर जाते थे, वो स्कूल के बुक्स की कवरिंग प्लास्टिक के बबल्स, वो टीवी रिपेयर वाले भैया, वो टेप की हुई बॉल, क्रिकेट की इंजीनियरिंग जहां हर बच्चा

कई चीज़ों में नहीं होती, कभी एक बबल फोड़ने में भी मिल जाती है, कभी एक मेलोडी के सेंटर तक पहुंचने में मिल जाती है, कभी एक संडे के टीवी प्रोग्राम में मिल जाती है, तो कभी एक पुराने 90s वाले गाने में ही मिल जाता है। हाय, जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद वापस आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो जी, नमस्कार है जी। एक बार फिर से लेजेंड्स के एक और नए एपिसोड के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। नाम है मेरा समर और दास्तान सुनाना है मेरा काम। केम छे सिंगापुर सारुज है, अखा सिंगापुर मारुज है। देखिए, आज मैं आपको जीप की सवारी कराने वाला हूँ। आपके मन की दुविधा को मैं जान गया। आप सोच रहे होंगे कि ओए पापे जीप। हाँ जी, कितनी भी लग्जरी कार्स आ जाएं, एक से बढ़कर एक लग्जरी, मगर आपके नजदीक से अगर कोई जीप की सवारी करता हुआ निकल जाए तो आप भी उसे एक बार तो पलट कर जरूर देखते ही हैं। इतना तो भैया हमारा दावा है। जीप भी वो मॉडिफाइड नहीं, इंडिया में तो कॉलेज में पढ़ने वाला जो लड़का मॉडिफाइड जीप में बैठकर टशन मारता हुआ आया कि लड़कियां फिदा और लड़के जल जल कर धुआं हो जाते हैं। वैसे जीप की एक और खासियत है साहब, इंडिया में गांवों में सवारियों को लाद लाद कर ये चलती हैं। कितने भी लोग एक जीप में भर जाते हैं। जीप एक तरफ ज्यादा वजन हो जाने से झुक भी जाए तो जानदार रहती है, मंजिल तक पहुंच ही जाती है। दरवाजा खुला रहता है तो ड्राइवर साहब थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसक कर टेढ़े बैठ कर भी, मतलब बाहर निकल कर भी मजे से चलाते रहते हैं। बस किसी तरह से स्टीयरिंग पर लटके रहते हैं, अपनी सीट पर एक सवारी और बिठा लेते हैं। यानी हर सवारी की प्यारी दुलारी शान की सवारी जीप हमारी। अगर इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया होता तो क्या होता, मैं ये सोच रहा हूँ। कौन इतना बोझा ढोता और मजबूत होता। तो जी, आज आपको लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में उन्हीं से मिलवाऊंगा जिन्होंने भारत को जीप से मिलाया। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते जाइए हमारी कड्डी कहां पहुंचती है। कुछ खा भी लेते हैं इस ब्रेक में। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: मैंने

0: गारे गारे
1: ये गारा बड़ा जे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: दिया गारे गारे
1: ये आम को बटला दिया
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो ये कचा तोरा नार आम जोड़े गले

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: यक चतुर ना।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: वेलकम बैक जी, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती पर एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर जीप की कहानी। नहीं, लेजेंड्स। लेकिन आज लेजेंड्स में जीप की कहानी, मतलब शुरुआत में मैं सुना रहा हूँ और आप समझ जाएंगे थोड़ी देर तक मुझे सुनते रहेंगे कि मैं ये क्यों सुना रहा हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर यूएस मिलिट्री आर्मी ने टेक्नोलॉजी में बड़ा ही एडवांसमेंट शो किया और कई तरह के फोर व्हीलर्स यूज किए, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह वगैरह, जो उनके वेपन्स और सैनिकों के ट्रांसपोर्ट के काम आते थे। लेकिन जरूरत हुई कुछ ऐसे छोटे व्हीकल्स की जो वजन भी ले जा सकें, छोटे मोटे ट्रूप को भी ले जा सकें। बस फिर क्या होना था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के शुरू होने के बीच ही आर्मी डिपार्टमेंट ने 3 कंपनियों को एक काम सौंपा, एक ऐसा व्हीकल डिजाइन करने का जो सारी डिमांड्स जो उनको चाहिए थी वो पूरी कर सके। और ये 3 कंपनियां थी फोर्ड, विली और बेंटम। और बना यूएस आर्मी ट्रक 1x4 टन 4x4, और इसे ही विलीज जीप और फोर्ड्स जीपीडब्ल्यू कहा गया, यानी जीप। और इसे भारत में वर्ल्ड वॉर के ठीक खत्म होने के बाद लाए महिंद्रा एंड मोहम्मद। हाँ जी, आप इसे समझ गए होंगे कि आज हमारी शख्सियत कौन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाउंडर दो भाई, केसी एंड जेसी महिंद्रा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार पहले मैंने बोला था महिंद्रा एंड मोहम्मद और महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा। सारे के सारे कंफ्यूजन दूर भगाऊंगा जल्दी, भी क्या है, गीत गाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, भारत आजाद हुआ और नेहरू जी ने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसानियत को बहुत से बोझों से मुक्त कराया है और नई शक्ति दी है, नई शक्ति जो सबके अच्छे के काम में आए। बस ये बात 3 लोगों को जंच गई। इन तीनों में से 2 तो भाई थे, कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा, और तीसरे थे गुलाम मोहम्मद। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई महिंद्रा एंड मोहम्मद, और इंडिया में पहली बार लेकर आए विलीज जीप। लेकिन ये कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुई, इसकी कहानी मैं आपको ब्रेक के उस पार बताऊंगा। और हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की आज बात करेंगे। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, सुनते रहिए लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी दो महिंद्रा ब्रदर्स जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उन्होंने सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस की जीप। यानी इन लोगों ने सबसे पहले इंडिया में एसी को इंपोर्ट किया और साथ ही लेकर आए स्टील। इनके साथ शुरुआत में जुड़े गुलाम मोहम्मद। हुआ यूं कि केसी महिंद्रा साहब मार्टिन बर्न नाम की ब्रिटिश एजेंसी में काम कर रहे थे जो इंडिया में रेलवे के कंस्ट्रक्शन काम से जुड़ी हुई थी। वहां से ही इनको सारा आइडिया आया बिजनेस का कि कैसे इसे शुरू करना है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम उनकी शुरुआती जिंदगी की ओर रुख कर लें। जीप में बैठकर हम इंडिया के पंजाब के लुधियाना के एक बहुत छोटे से गांव में चलते हैं, यहाँ के एक जमींदार परिवार के बिशन सिंह के पास। बिशन सिंह जी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जमीन थी और इनके यहाँ 9 बच्चे पैदा हुए। हालांकि बिशन सिंह जी बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन उनकी वाइफ जो खुद भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी मगर बहुत ही केपेबल वुमन थी, उन्होंने बच्चों की बहुत कमाल की और अच्छी परवरिश की। उनको खुद लगता था कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों केसी और जेसी को अच्छी एजुकेशन दिलाई। केसी जी को कैम्ब्रिज भेजा और जेसी जी को ऑक्सफोर्ड। ये उन दिनों बहुत बड़ी और अजब बात होती थी, अनूठी बात कि इंडिया से ब्रिटेन पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाए, और ये उतना सस्ता भी नहीं था। ये कब की बात है मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। ये केसी जेसी महिंद्रा की कहानी समर की जुबानी। आप सुन रहे हैं इसे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: 1/2 kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: माँ की दुआ थी, माँ की तमन्ना थी कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और कुछ कमाल करें, चाहे माँ को कैसे भी मैनेज करना पड़े। आज जी आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मेरे यानी समर के साथ। हमारे आज के लेजेंड्स की कहानी ये है, अचीवर सीरीज में दो महिंद्रा ब्रदर्स जिन्होंने मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप के नए इतिहास रचे, कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा। कैलाश चंद्र महिंद्रा साहब का जन्म हुआ 1894 में और जगदीश चंद्र साहब उनसे 2 साल पहले यानी 1892 में पैदा हुए। फादर की जल्दी डेथ हो जाने के बाद जेसी जी घर का पूरा ख्याल रखने लगे। उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और न सिर्फ अपनी बल्कि अपने भाई बहनों की भी, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, खासकर अच्छी यूनिवर्सिटीज से वो पढ़ाई करें, इसका उन्होंने बहुत ध्यान रखा। उन्हीं ने अपनी माँ को भी इस बात के लिए सपोर्ट किया, उन्होंने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं उनके छोटे भाई केसी जी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, जो मैंने आपको बताया अभी, कैम्ब्रिज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां उनको मंथली मैगजीन इंडिया और द हिंदुस्तान रिव्यू की एडिटिंग का काम दिया गया और उसे बखूबी संभाला उन्होंने। वहीं जेसी जी ने टाटा स्टील में एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया और 1929 से 1940 तक वो इस काम में लगे रहे। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड में स्टील इंडस्ट्री खतरे में आ गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें फर्स्ट स्टील कंट्रोलर ऑफ इंडिया बना दिया। इधर केसी जी भी अच्छी पोजीशंस पर रहे। ये तभी हो सकता है जब बच्चों को इस बात का एहसास हो कि उनका काम करना कितना जरूरी है, और ये बात ये दोनों भाई बखूबी जानते थे। जेसी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या काम कर रहे थे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। केसी जी के बारे में एक ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ। सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स की अचीवर सीरीज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और शो चल रहा है लेजेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात कर रहे हैं जेसीएन केसी महिंद्रा साहब की। आपका जवाब आ गया, मुझे पता लग गया, आप कह रहे हैं हम अच्छे हैं, ठीक है। और जो जो जो थोड़े से नासाज हैं, जिनकी तबीयत, उनके लिए मैं बहुत जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगा। बिल्कुल ठीक रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव। आज लेजेंड्स में हम अचीवर सीरीज के दो महान शख्सियतों से आपको मिलवा रहे हैं। ये हैं जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। तो कहानी में हम थे लगभग भारत की आजादी के आसपास। आजाद होने से पहले, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले, दोनों भाई जिन्होंने बिजनेस शुरू किया वो अच्छी खासी जगह नौकरी कर रहे थे और बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे थे। केसी जी को 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बनाया गया था। इससे पहले, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने मार्टिन बर्न के साथ काम किया ब्रिटेन में। भारत लौट आए वो यूएसए और 1945 में इंडियन कोल फील्ड्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। साथ ही ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल के चेयरमैन भी रहे। यहाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोल इंडस्ट्री को एक प्रॉपर शेप दी। आज तक उन्हें इसके लिए याद किया जाता है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारी जानकारियां उन्होंने जुटाई जो बाद में उन्हें अपनी बिजनेस

बिजनेस में बहुत मददगार साबित हुई। तो ये दोनों भाई एक तरह से अपने बिजनेस की नींव डाल रहे थे, लेकिन जब इनकी तिकड़ी बनी यानी इनमें मलिक गुलाम मोहम्मद की एंट्री हुई, तब कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले मैंने आपको मार्टिन एंड बर्न का जिक्र किया था ना, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब इस समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स की अचीवर सीरीज एंजॉय करते हुए, सुनते हुए और बहुत कुछ सीखते हुए, इसीलिए हम कहते हैं कि जोश में रहिए और अपने सपने पूरे कीजिए। मिलता हूं इस ब्रेक के बाद।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका हम सफर समर, और आज हम जिनकी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं वो हमारे आज के लेजेंड्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी केसी एंड जेसी महिंद्रा। मैं आपको किसी इंसिडेंट के बारे में बताना चाह रहा था ना, लेकिन उसके लिए हमको कहानी में थोड़ा और पीछे चलना होगा, फ्लैशबैक में, जहां केसी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जस्ट बाद मार्टिन बर्न के साथ ब्रिटेन में काम करना शुरू कर दिया था। एक साल के बाद वो इंडिया लौट आए थे और सर राजेंद्र मुखर्जी के साथ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर कोलकाता में काम करने लगे। ये राजेंद्र मुखर्जी साहब थे मार्टिन बर्न के पार्टनर, ये कंपनी के 37% के पार्टनर थे। वेल इनफैक्ट 1871 से 1960s तक मार्टिन बर्न कंपनी भारत के चार बड़े बिजनेस हाउसेस में से एक थी। भारत में उन दिनों यानी 19th सेंचुरी के आखिरी के दिनों में रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट पर अंग्रेज गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही थी, प्राइवेट कंपनीज को यह जिम्मा दे रही थी। ऐसे में मार्टिन बर्न भी अपना हाथ आजमा रहे थे। ये तभी की बात है जब केसी जी राजेंद्र मुखर्जी साहब के साथ जुड़े हुए थे। उन दिनों मार्टिन बर्न बड़े सनकी टाइप के, बड़े ही अलग तरह के इंसान हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनको वो प्रोजेक्ट मिल पाता रेलवे वाला। ऐसे ही एक दिन मार्टिन बर्न ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर्स भी आए, यहां से कुछ मदद की उम्मीद थी उन्हें। बीच पार्टी में ही अचानक से राजेंद्र मुखर्जी खड़े हुए और बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने अनाउंस किया, यहाँ हम सब के बीच एक यंग मैन है, आप सब लोगों से कुछ नहीं होगा, मगर वो बहुत कुछ कर सकता है, मैं उसे जूनियर पार्टनर बनाता हूँ मार्टिन बर्न का। ये यंग मैन कौन थे जानते हैं? केसी जी। हाँ जी, वो फाइनेंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, जबकि उनके बड़े भाई जेसी जी थे एक एक्सीलेंट टेक्नोक्रेट। तो इस तरह से ये जोड़ी बड़ी कमाल की साबित होने वाली थी। टाटा स्टील के साथ काम करते हुए उन्होंने कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों ने मुखर्जी और टाटा का साथ छोड़कर गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया। वैसे भी इन लोगों को तो बनना था एंटरप्रेन्योर ही, तो कब तक किसी के साथ काम करते। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आगे कहानी में आपको जरूर सुनाऊंगा, यहीं पर आइए लौट कर। ये रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ समर आपके साथ।

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम है जी, मैं हूँ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप मेरे साथ हैं लेजेंड्स के सफर पर। आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जेसी और केसी महिंद्रा साहब की। कहानी में बड़ा ही उतार चढ़ाव है, हालांकि पैसा खूब है। इन लोगों को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई नहीं, तभी तो उन्होंने एक दिन बिना ज्यादा सोचे कंपनी बना डाली। लेकिन तब भी ये सच है कि कोई भी एक दिन में एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता है। इनकी प्लानिंग भी कई सालों तक चलती रही साहब। केसी जी सरकार के साथ काम कर रहे थे, उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था। उन्होंने अपने बेटे केशव महिंद्रा को वॉशिंगटन बुला लिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएट हुए और ग्रेजुएट होते ही जेसी जी भी उधर पहुंच गए और उनके बेटे हरीश भी जो हार्वर्ड से पढ़ाई कर रहे थे। इन चारों ने बैठकर प्लान बनाया और शिकागो में एक कंपनी की नींव रखी, वेन सेवरिन नाम की। इस कंपनी का काम था बड़े बड़े डीजल इंजन बनाना। लेकिन सब तैयार होने के बाद आखिरी मौके पर एंड मोमेंट पर इंडियन गवर्नमेंट पीछे हट गई और काम ही नहीं दिया उन्हें। अब सब क्या करते, यानी वेन सेवरिन किसी काम की नहीं रही। भाई एक ऑर्डर मिला था इंडियन गवर्नमेंट से, उसी के बलबूते तो ये कंपनी डाली थी। कुछ टाइम एक बार फिर उन्होंने सोचा कि यार क्या करें। विचार आया कि इस कंपनी को रैप अप कर देते हैं, लेकिन एक और पार्टी तैयार थी साथ में काम करने के लिए। लेकिन केशव जी ने तब मना कर दिया। ब्राजील में एक जॉब मिल रही थी उन्हें और वही उन्होंने करने का मन बना लिया। जेसी जी ने उन्हें मना कर दिया और पूरे परिवार ने सोचा कि चलो अब इंडिया लौट चलते हैं। जब वो लोग लौट कर आए 1940s में, तो कलकत्ता नहीं गए, बॉम्बे चले गए। कलकत्ता में मार्टिन बन उनके साथ भी थे। उन लोगों के साथ हरीश जी का एक फ्रेंड भी आया, बीआर सूले, जो इनकी पहले कंपनी में भी इनके साथ थे, वेन सेवरिन में। और इन्हीं दिनों इनके एक और फ्रेंड बने, गुलाम मोहम्मद। फैमिली फ्रेंडशिप जैसे हो गई थी, यानी चारों लोग जेसी, केसी, केशव, हरीश और इनके साथ बीआर सूले ने गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने की सोची। ये कंपनी थी महिंद्रा एंड मोहम्मद। जीप और स्टील का इम्पोर्ट इसका प्रिंसिपल बिजनेस था। इसका ये नाम इन्होंने क्या सोचकर रखा, एक ब्रेक के बाद बताऊंगा। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स की द अचीवर्स सीरीज में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी मेरी जुबानी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, माफ कीजिएगा, महिंद्रा एंड मोहम्मद के एस्टेब्लिशमेंट की। ये साल था 1945 का, 1945 2 अक्टूबर। इस कंपनी में पैसा लगाया नेपाल के राजा ने। मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले इस बात पर छोड़कर गया था कि उन्होंने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद क्यों रखा, क्योंकि वो देश में हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देना चाहते थे। उन दिनों इंडिया में हिंदू मुस्लिम टर्मोइल चल रहा था, ऐसे में ये कंपनी मिसाल थी। लेकिन दो साल बाद भारत आजाद हो गया और गुलाम मोहम्मद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए। उनके जाने के बाद केसी और जेसी के सामने आया एक बड़ा सवाल, कंपनी का नाम बदला जाए तो फिर क्या रखा जाए, मोहम्मद रखा जाए या हटाया जाए। फिर उसका नाम हुआ मोहम्मद टू महिंद्रा, यानी M&M ही रहा। जरा सा बदलाव किया गया उसमें, जो बाद में महिंद्रा एंड मोहम्मद की जगह महिंद्रा हो गया। वैसे भी M&M में गुलाम मोहम्मद का ज्यादा पैसा लगा हुआ नहीं था, जीप इंपोर्ट कर रहे थे, इंडिया में बेच रहे थे, इससे इनका बड़ा नाम हुआ, खूब पैसा कमा लिया इन लोगों ने। केसी जी जिन दिनों वॉशिंगटन में थे, इन्होंने अपनी बहुत पहचान बना ली थी विली कंपनी के साथ, बस वही पहचान काम आई। पहली बार 75 जीप मंगवाई गई, 1947 की ये बात है। अमेजिंग रेस्पॉन्स मिला। M&M ने, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, बॉम्बे के मजगांव में एक ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की बहुत बड़ी जमीन लीज पर ले ली। यहां से पहला जीप असेंबली प्लांट शुरू किया और इसके थोड़े टाइम बाद आया हरिकेन। क्या हुआ, आपको लगा मौसम का कोई शो चल रहा है या मौसम बदल गया? अरे बाबा, मैं सब बताऊंगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। कैसा था ये हरिकेन? स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर एंड साउथ ईस्ट एशिया ओनली हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका हम सफर, नाम है मेरा समर। लेजेंड्स में आज हमारे साथ हैं M&M, बोले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं ब्रेक पर जाने से पहले किसी हरिकेन की बात कर रहा था ना, हुआ यूं कि साहब हरिकेन नहीं आया, लेकिन साल 1949 में, 1949 में ही M&M ने विली कंपनी से इंडिया में जीप बनाने के राइट्स ले लिए। इसमें एक बदलाव किया, वो था पेट्रोल से चलने वाला इंजन लगाया जाएगा। इस व्हीकल का नाम रखा गया हरिकेन। इंडियन कंडीशंस में ये बेहतर साबित हुआ और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया बहुत ही जल्दी। इन्हीं सालों के दौरान इंडिया में और भी कई ऑटोमोबाइल कंपनीज बनी, जैसे वॉल्चंस का प्रीमियर ऑटोमोबाइल, बिड़ला की हिंदुस्तान मोटर्स, साथ ही टाटा और अशोक लीलैंड टाइप की कंपनीज। लेकिन महिंद्रा जीप के आगे सब कार्स फेल थी और इस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा का कारवां आगे बढ़ता गया। मैं आपको बहुत शॉर्ट में माजी के सफर पर ले चलता हूं। 1948 में स्टील ट्रेडिंग बिजनेस शुरू हुआ, 1949 में शुरू हुआ जीप असेंबली का प्लांट और 1954 में विलीज ओवरलैंड कॉरपोरेशन के साथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हुआ और 1958 में मशीन टूल्स डिवीजन स्टार्ट हो गया। 1961 में इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इंडिया बनी और 1962 में स्टील फील्ड में पूरी तरह से एंट्री करते हुए कंपनी ने महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी मस्को बना ली। 1970 में महिंद्रा इंजीनियरिंग एंड केमिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी MECP की स्थापना हुई। 1975 में कंपनी ने डीजल व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया और 1982 में आया महिंद्रा ब्रांड का ट्रैक्टर। एक साल बाद ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रैक्टर के बिजनेस में पहला नंबर पा लिया। महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम MBT, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन के साथ जो UK की कंपनी थी, और 1996 में महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड बना जो फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर था। सच कहें तो महिंद्रा ने धीरे धीरे सारा मार्केट अक्वायर कर लिया, लेकिन जैसा होता ही है बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। यहाँ भी कई बार ऐसा ही हुआ, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी, लेकिन तब भी वो सबसे आगे निकल कर आगे बढ़ती रही। एक ब्रेक के बाद इस सफर की भी बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल में। हूँ समर, लेजेंड्स के आज के सफर पर आपको महिंद्रा ब्रदर्स की कहानी सुना रहा हूँ, केसी और जेसी महिंद्रा साहब की। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे राइट ब्रदर्स ने पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाया, जैसे ये दोनों भाई एविएशन में पायनियर्स थे, वहीं भारत में ये दोनों भाई यानी केसी और जेसी महिंद्रा साहब ऑटोमोबाइल में पायनियर्स कहे जा सकते हैं एक तरह से। जेसी साहब 1951 में गुजर गए, उनके बेटे हरीश महिंद्रा काम कर ही रहे थे। केसी 1963 तक जुड़े रहे और फिर वो भी इस दुनिया को छोड़कर गुजर गए। उनके बेटे केशव जी ने लंबे वक्त तक कंपनी को संभाला और ग्रो किया और फिर उन्होंने हरीश जी के बेटे आनंद महिंद्रा को इसका काम संभाला दिया। केसी जी के नाम से एक एजुकेशनल ट्रस्ट भी है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही जेनरस नेचर के पर्सन थे। उन्होंने हमेशा कंपनी के हितों को ऊपर रखा, अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे वो। वेल, दोनों भाइयों का एक ही मानना था कि यंग इंडिया पर राज करने का एक ही तरीका है ट्रांसपोर्ट के मीडियम, क्योंकि जैसे भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ, भारत की दौड़ को पहियों की सवारी दी इन भाइयों ने और इंडिया आगे ही बढ़ता चला गया। M&M भी टुडे वी विल थिंक बिगर देन आवर साइज, टुडे वी विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लिमिटेशंस, टुडे वी विल नॉट बी हेल्ड बैक बाय द पास्ट, टुडे वी विल फोकस ऑन द फ्यूचर एंड नेवर एवर ब्लिंक। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए शो में एक और कहानी के साथ। ऐसे ही बिजनेस एम्पायर की कहानी, ऐसे ही एक और महान शख्स की कहानी, एक और लेजेंड की कहानी। तब तक के लिए बस इतना ही कहूंगा कि रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा ना, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा और किसी की यादों में बस जाइएगा। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, मिलता रहूंगा बार बार, क्योंकि ये है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर घूमते।
0: इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 live. Have a Musti Bhara weekend.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों

0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: मैं और तू, ओ माय गॉड, नई गाँव में. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती.
2: क्या क्रेजी गाने के साथ आज फ्राइडे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है, विच मींस इवन द शो इज गोइंग टू बी क्रेजी.
0: रेडियो मस्ती 24/7 जी, हमेशा की तरह फ्राइडे सुबह हम आ चुके हैं. और मतलब आपको और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, हम हैं और आपकी ये सारी सारी बातें हैं. रेडियो मस्ती 24/7 है और साथ में अगला गाना है जिसे कहते हैं मौजा ही मौजा, है ना अंतरा?
2: Absolutely. And मतलब इससे बेहतर तो आपकी जिंदगी में क्या ही हो सकता है. फ्राइडे मॉर्निंग में आप हो, हम हो एंड मस्ती मैडनेस हो, मोक्ष प्राप्ति हो गई. मतलब it's equivalent, my dear friends.
0: Confidence को हमसे मतलब हम हैं, आपको चाहिए क्या हो सकता है जिंदगी में. बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि मुझे चाहिए हो सकता है, और वो है 325 करोड़ जो रणवीर सिंह ने कमाए हैं धुरंधर से. ओहो हो, 300.
2: मेरे सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, ये जो धुरंधर वाले बाल है ना, वो भी चलेंगे मुझे रणवीर सिंह के.
0: तो बाल रख ले, मैं माल रख लेती हूँ, ऐसी क्या बात है. रेडियो मस्ती 24/7 पर आपको क्या चाहिए, बाल या माल, हमें बताइए 9151896 3 पर. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड लेट्स गो.
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारा आज का ये शो। इसमें आपका दिल चोरी नहीं होगा, लेकिन इतना बता सकते हैं कि आप टोटली माइंड बॉगलिंग खबरों को सुनेंगे रेडियो मस्ती 24/7 पर। हमारा अगला नहीं, पहली खबर
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है। इन्होंने जैसे ही हमारा कहा, मेरा तो दिमाग में चलने लगा हमारा बजाज इतने इतने सुर में कहा गाया कि वो बजाज ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया इन माय माइंड।
0: जैसे देखो ये बोलते हैं रिंग रिंग रिंग, दिल का टेलीफोन रिंग रिंग। एक बार मेरे को एक टैक्सी वाले ने बोला था बैठते ही, जब मैं ना बात कर रही थी तो मुझे कहता है तुम्हारी ना बात करने का ढंग ऐसा है जैसे तुम गाना गा रही हो। मैंने मेरे घर वालों से पूछ, हाँ घर वालों से पूछ मेरा, वो बोलते चुप हो जा। एनीवे, तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी फ्लाइट हो जाए डिले, जिसकी वजह से आप फंक्शंस मिस कर दें, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में इशू हो जाए, या आपको सपोर्ट नहीं मिले जैसा कि आपने बुक किया हो, जैसे कि कार्ट बूढ़े लोगों ने बुक करी हो कि यू नो हमें थोड़ी हेल्प चाहिए सीनियर सिटीजन ने, और वो ना मिले एयरपोर्ट पे एंड ऑल दैट, तो आप डेफिनेटली सू कर सकते हैं ऑलराइट एयरलाइन को फॉर लैक ऑफ सर्विस और फॉर कॉजिंग एग्नी एंड ऑल दैट, राइट। और यही किया एक इंडियन कपल ने। वेल दे वर ट्रैवलिंग अमेरिकन एयरलाइंस, एंड अमेरिकन एयरलाइंस पहले थी फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बाद शिकागो जाना था उनको। अब क्या हुआ कि उनकी जो न्यूयॉर्क टू शिकागो की फ्लाइट है वो हो गई कैंसिल, 10 घंटे उनको बैठना पड़ा एयरपोर्ट पे। अब मतलब उनके मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ है जो भी है, उसके बाद फ्लाइट कहीं और लेके गई, कहीं और से कहीं और, ये करते करते उनके जो जिस रीजन से दे वर गोइंग दे ऑल्सो मिस दैट। अब वो सब करते हुए उन्होंने मेंटल एग्नी और बहुत कुछ हरासमेंट एंड ऑल दैट का एक एफिडेविट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया अलॉन्ग विद बोर्डिंग पासेस एंड ऑल। एयरलाइन की तरफ से कोई नहीं आया, एंड देयरफॉर दे वर पेड 2.2 लाख्स पर पर्सन फॉर ऑल दैट हैपेंड। जी जी बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में?
1: मैं कहती हूँ ध्यान देना चाहिए, ध्यान इज द मेन थिंग। ये सारी चीजों पे ना हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता कि अच्छा हो गया, हम वाइन करते रहते हैं, बाद में हम लोगों को किससे बताते भी है, बट वी नेवर रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आई थिंक we should be more careful and conscious of these loopholes.
0: Absolutely. I think बहुत important है क्योंकि airlines जो है ना बच के चली जाती है, लेकिन मुझे चिंता पता है क्या है अंतरा, कि कुछ airlines पहले बेचारी इतनी losses पे चल रही है, अगर उनपे इस तरह के cases होते चले गए तो वो तो गई
1: है ना? कोई तो सोच रहा है बेचारे airline वालों के, मतलब टिकट नहीं दे रहे वो हमें फ्री, रेणुका कुछ नहीं होने वाला।
0: ओके ओके,
2: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere anytime the desi way.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: 3, 2, 1.
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है.
3: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: पर मुझे ऐसे बहुत नायाब टाइप के इन्वेंशन ना अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक वी कैन पुट इट टू यूज अच्छे अच्छे तरह से.
3: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
4: Radio Musty 24/7. जी हाँ, यहाँ पर हो रहे हैं 7:28 और रेणुका और अंतरा आपको लेकर जा रहे हैं अजीब गरीब खबरों की दुनिया में. क्यों अंतरा, क्या खबर लाई हो छमिया?
2: मैं सोच रही हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक जिस तरह का इन्होंने बनाया है, इट्स वेरी नाइस. एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है. अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ दिनों में, एंड स्पेशली इट हैपेंस विद मी, जब वो ट्यूसडे मॉर्निंग वाले शो पे जल्दी उठना पड़ता है, बट वो जो स्नूज बटन होता है ना, मतलब वो ऐसी चीज बनाई है उन्होंने, कभी कभी वो इतनी बार स्नूज हो जाता है कि फिर अचानक से आप आँख खोलते हो कि ओ बेटा अभी तो एकदम ही थोड़ा सा टाइम ही पता है, एंड देन वी काइंड ऑफ स्टार्ट रनिंग एंड रशिंग एंड कि चलो छोड़ो यार नहाएंगे, आके नहा लेंगे. पहले नौकरी करने जाते हैं, वैसे वाली सिचुएशन जाती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अलार्म क्लॉक वेयर जो अलार्म क्लॉक जब बजना शुरू होगा, सो इट विल थ्रो 3 पीसेस ऑफ पजल इन द एयर. 3 अलग अलग पीसेस. सो उस आवाज को बंद करने के लिए यू विल हैव टू गो पिक दोज पजल्स एंड पुट इट बैक इन द अलार्म क्लॉक. By the time you will do this, you will be definitely 110% awake.
4: Oh, अच्छा, मतलब सुबह उठ के एक्शन करो, नहीं तो स्नूज करते रह जाओगे. पर हम क्यों खरीदेंगे ऐसी अलार्म क्लॉक जो अपने को ही टॉर्चर करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए. तुम लोग
2: नहीं, रेणुका सैटरडे संडे नहीं यूज करेंगे, बाकी दिन के लिए इज फाइन.
4: बाकी दिन भी, डू यू नो, After I wake up, I need at least 30-40 minutes to come to my senses. मुझसे कोई बात करता ना, मैं उन्हें काट लेती हूँ. तुझे नहीं पता मैं मंडे सुबह का शो कैसे करती हूँ. You don't want to know. आज तो फिर भी तू मिल जाती है. Oh my God. Okay. गाना.
2: Okay.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: thanks.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
0: All right, आपका यहाँ पर स्वागत और रेडियो मस्ती 24/7 पर. हम तो एक ही बात कहेंगे भाई कि अगर कोई आपके पास आता है कि हमको रेफर कर दो तो ब्लाइंडली कभी भी रेफर नहीं करना चाहिए नौकरी के लिए.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: क्यों भाई, करना चाहिए? तुमने कभी किया है किसी को ब्लाइंडली रेफर?
3: नहीं जी, ना ऐसा मौका ऐसा कुछ आया है हाथ में, ना खुद के लिए कभी ऐसा सोचा है. अब तो मतलब क्या ही बताए अपनी तारीफ, क्या ही करे. जिंदगी के बाद भी वाला सिचुएशन हो गया है यहाँ पर.
0: तो ये तो अच्छी बात है ना, बड़ी किस्मत से अच्छे बॉसेस मिलते हैं. ये मैं तुम्हें हर हफ्ते याद दिलाती हूँ.
3: मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ.
0: राइट. सो भाई, ऑन रेडियो मस्ती ऐसी बात है कि टेक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हमेशा कंपनीज में ये रहता है, इफ यू रेफर समबडी यू गेट अ रेफरल फी, इफ यू रेफर समबडी एम्प्लॉयज को कहा जाता है $1,000 मिल जाएंगे यू नो आपको. तो आप भी कहते हो ठीक है यार, किसी को नौकरी मिल जाएगी और कंपनी को भी फायदा हो जाएगा और मुझे पैसे के पैसे मिल जाएंगे, तो व्हाई नॉट. लेकिन भारत में इस समय किसी ने किसी को रेफर किया. ऑलराइट, नाउ दिस पर्सन व्हेन ही केम फॉर द इंटरव्यू, तो उसको कोडिंग का एक छोटा सा सवाल दिया गया, थ्री सम कोडिंग का. अब थ्री सम एक वर्ड नहीं है, नंबर तीन सम अंतरा. ओके, इट्स फ्राइडे.
3: थैंक यू.
0: या देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि वो फेल हो गया वो इंसान. ठीक है, अब हमने कहा ये किस तरह की बात है. तो उसको तो निकाला ही निकाला इंटरव्यू वाले ने, लेकिन जिसने उसको रेफर किया था उसको चिट्ठी गई. उसको कहा कि आपने जिसको रेफर किया था वो एक बेसिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया है, तो इससे हमें आपके जजमेंट पे भी सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए अब हम आपका इंटरव्यू भी करेंगे. तो आप इंटरव्यू पे दोबारा से आओ, चाहे आप हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहे हो, बट वी वॉन्ट यू टू.
3: But this is good, actually very very good. वो ना बहुत आपने देखा होगा ये सिस्टम कि मेरे वो जो जेठ के बहू के दिस है, तुम करा दो ना प्लीज, तुम अपने उसमें करा दो ना करके. कितने लोगों की ऐसे मतलब विदाउट नोइंग कि भाई उसको काम आता है नहीं आता है, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. एज एन एम्प्लॉयर यू हैव टू बी अवेयर.
0: ऐसे मत करो यार, तुम ऐसे मत करो. बेचारे उसकी भी नौकरी खतरे पे चली गई, ये कौन सा तरीका हुआ? अब कौन कौन सा एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम को बिल्कुल सीरियसली लेगा? गलत बात. HR वेरी रॉन्ग. एनीवे आई एम ऑलवेज अगेंस्ट HR इन एनी केस.
3: ओह माय गॉड.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अतरंगी कहानियों का एक ही जगह मस्ती मैडनेस आपके फ्राइडे को निखारता हुआ।
3: वाह मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है।
4: कितना घटिया शायर का शायराना लग रहा था ये।
2: You're most welcome. Thank you.
4: Seriously.
2: But, कुछ ऐसे एक एक एक केस लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर कि भाई ये जिंदगी कितनी यूनिक और नायाब होती है रेणुका कि पता नहीं चलता कि कौन किस मोड़ पे मिल जाए और वो हमारा क्या लगने लगे। भाई 2014 की ये बात है, ये केस था जहाँ पे 39 ईयर ओल्ड ये जो बंदी है फ्रॉम ब्राजील, नाम है एड्रियाना, वो एक टीवी शो पे आई, रेडियो शो पे आई बिकॉज शी वॉज फाइंडिंग हर मदर जिन्होंने इसको अबैंडन कर दिया था व्हेन शी वाज अ बेबी। ओके, शी वाज इवेंचुअली रियूनाइटेड अपनी मम्मी से हुज नेम इज मारिया, ओनली टू डिस्कवर दैट मारिया यानी कि उसकी मम्मी ने एक और बच्चा अबैंडन किया था, लियांड्रो।
4: अच्छा,
2: वो टर्नड आउट टू बी एड्रियाना का हस्बैंड।
4: ओ यार यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल।
2: आप देख रहे हो किस्मत का खेल।
4: हाँ, ये बड़ी गंदी चीज हो गई है जिंदगी में। ये पहले भी हमारे पास एक ऐसी न्यूज आई थी कि इस तरह से जो स्टेप भी नहीं थे, रियल ब्रदर और सिस्टर थे, जो कि बाद में जाके पता लगा। और फिर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कोर्स द बाजस ऑफ बॉलीवुड। रिमेम्बर
2: करेक्ट।
4: सो फिल्में बिल्कुल रियलिटी पर ही बनती है। अगर आपने नहीं देखी है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तो जाके देखें जरूर, क्योंकि कुछ कहानी में ट्विस्ट इसी तरीके का आया था।
2: हाँ, बस यही एक ट्विस्ट है।
4: हाँ, और यही एक ट्विस्ट था, जैसे धुरंधर में ट्विस्ट आया था ना, राकेश बेदी निकला था एंड में। सो
2: थैंक यू
4: अगले घंटे।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है। अरे आपका स्पेशल शो, आप बोलते हो तभी तो आते हैं हम।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: और ये सोचना बंद कर दो आप सभी कि कहाँ से लाते हैं खबर। देखो ले आते हैं ना, इंजॉय करो आराम से बैठ कर।
0: कोई नया सवाल पूछो हमसे। तो भाई अब मैं बड़ी खुश हुई इस बात को जान के कि क्या होता है कि एक फ्लाइट होती है वो फुल फ्लेजेड वाली जिसमें

0: जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है, उसमें आप जाते हो तो आपको मिलता है खाना, आपका पूरा बैगेज होता है, सब कुछ होता है, राइट. एक होती है स्कूट, ठीक है, अब स्कूट में आप जाते हो तो आपको खाना वाना नहीं मिलता पर आप खरीद सकते हो, राइट. एक होता है इंडिया, इंडिया होता है जुगाड़, उसमें दोनों का मजा है, एयर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है.
1: तो आपका फेवरेट, यस
0: बिल्कुल. तो हाल ही में उन्होंने एक अनबंडल्ड इकोनॉमी बेसिक फेयर ऐड किया है, ओके, एंड दिस इज ओनली ऑन सिलेक्टेड डोमेस्टिक जो रूट है. तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो मील्स मिलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, उनको हटा दिया है, और आपको खरीदने के लिए बिल्कुल ऑप्शंस दे दिए. तो उससे क्या है, आपकी जो फ्लाइट का फेयर है वो थोड़ा सा कम हो गया. इस समय चल रहा है ट्रायल. सो अब हमें पता है कि फ्यूल के कॉस्ट थैंक्स टू सर्टेन पीपल इन द वर्ल्ड इतने ज्यादा ऊपर हो गए हैं. तो अब क्या है कि पैसेंजर्स कहते हैं यार यहीं तक तो जाना है, इतनी महंगी टिकटें होंगी. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं. सो डोमेस्टिक रूट्स पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पर. 15 किलो का आपको चेक्ड इन बैगेज अलाउड है, आपको 7 किलो का कैबिन अलाउड है बैगेज, और कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी भी अलाउड है, ठीक है. क्या नहीं है उसमें इज द स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, ठीक है. तो आपको इट्स फाइन, आप मतलब आप मना कर दो, नहीं तो
1: इट्स डूएबल. हाँ,
0: नहीं तो आप वहां पे खरीद सकते हो, वो बेच भी रहे हैं, तो सही है ना. मुझे तो ये जुगाड़ आइडिया बहुत पसंद आया. आई थॉट रियली वेरी गुड.
1: It's a nice thing. मतलब मेरी मम्मी होती तो बोलती कि कोई नहीं मैं रह लूंगी, 4-5 घंटे तो भूखा रहना है, तो क्या हो गया, नहीं लेंगे
0: बस
1: खाना.
0: The only thing I'm worried about is वो पराठे और अचार की स्मेल जो अब घर से स्मगल होकर आएंगे, कि पड़ोस वाला जो वहीं का खाना खा रहा है वो बोलेगा भाई तू ही बेच दे मेरे को, यही खा लेता हूँ मैं. मित्रों के साउंड ट्रैक से ये वाला गाना इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर. स्टे ट्यून्ड.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: ये जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ जू के वाफरे वादर फरे ने वायरो फरे पढ़े एक बार बोले बच्ची मारे मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो.

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.

0: जानेमन आ जानेमन आ आ आ
1: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो
2: क्रेजी शो है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. अब ऐसे ही करेंगे ना. अब हम मतलब क्या चाहते हो, इससे भी हम एकदम इंसानों के जैसे बिहेव करने लगे जैसे हम नॉर्मल दिनों में करते.
0: फ्राइडे मॉर्निंग नो जजमेंट. फ्राइडे मॉर्निंग जस्ट लेट अस जस्ट बी व्हाटएवर वी वांट टू बी एंड यू बी व्हाटएवर यू वांट टू बी राइट.
2: या हम इसीलिए तो दवाई लेके नहीं आते फ्राइडे मॉर्निंग. बाकी दिनों हम एकदम एकदम अच्छे से रहते हैं. भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक बड़ी अतरंगी रिश्तों के बारे में, बट अब मैं लाई हुई एक अतरंगी एक और चीज के बारे में. लीजा इनका नाम है. जब ये 11 साल की थी रेणुका, शी वेंट ब्लाइंड बिकॉज एक उनका ट्यूमर था विच वॉज प्रेसिंग उनके ऑप्टिक नर्व पे. ओके सो ओवर द टाइम धीरे धीरे करके शी मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गई, कुछ नहीं देखता. तो उसने अपने साथ एक गाइड डॉग जो है कहते हैं जिसको एज अ सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट एंड गाइड डॉग उसने रखा. ठीक है 13 साल हो गए ऐसा करते करते. देन एक आम सी रात आई नवंबर की. अब ये लड़की हो गई है 24 साल की. तो इसने क्या यूजुअल जो रोज रोज करती है तो उसने शी लीन डाउन अपने गाइड डॉग को गुड नाइट किस देने के लिए. एक्सीडेंटली इसका था करके लग गया कॉर्नर कॉफी टेबल से सर.
0: और
2: उसकी क्या कोई नहीं उसने करा जाके सो गई. सुबह उठी शी कुड सी.
0: यार ये हिंदी पिक्चरें हैं यार. ये सच्ची बड़ी पुराने जमाने की घटिया वाली फिल्म थी.
2: हाँ बट क्या करूँ. बट डॉक्टर्स भी कह रहे अब देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है. वो कहते हैं ना कि वो जो हम लोग पहले क्या करते थे टीवी का रिमोट नहीं चल रहा होता तो वो ठाक ठाक ठाक करके एकदम करते थे कि कहीं कुछ तो कनेक्शन कहीं पे ठीक ही हो जाएगा लग जाएगा. आई थिंक समथिंग लाइक दैट दिस काइंड ऑफ मिरेकल्स आल्सो हैपन.
0: बिल्कुल. मैंने हाल ही में एक अंग्रेजी फिल्म भी देखी थी नेटफ्लिक्स पे जिसमें कि एक आदमी जो हर जगह मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहता था सडनली वो पोल से टकराता है एंड व्हेन ही वेक्स अप ऑल द वुमेन इन हिज लाइफ हैव बिकम द बॉसेस एंड इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड. इट वाज क्वाइट अ फन मूवी बाय द वे. पर फिर उसको एंड में दोबारा से पोल पे जाके मारना पड़ता है टू कम बैक टू द रियलिटी एंड बाय देन ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ऑल द वुमेन. सो आई थिंक hint yes anybody wants to try
2: so now we know what to do with them. Okay.
3: Yeah. You're tuned into Radio Masti 24/7 live keeping the world Bollywood entertained anytime anywhere.

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। Out loud moments to larger than life jungle ka madness. This entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: एक हवा का झोंका आता है, मेरे पेट में घुस जाता है और उसके बाद मेरा पेट हो जाता है मोटा, और अगले ही महीने अगले ही महीने या अगले महीने भी क्यों, एक घंटे के बाद आई एम द मदर ऑफ अ बेबी गर्ल. लेकिन हवा का झोंका, यस दैट्स व्हाट मेड मी प्रेग्नेंट.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
2: मैं क्या सोच रही थी कि मतलब ये तो कहीं रेणुका मेरी ही बात नहीं कर रही थी कि जब सांस भी लेती हूँ हवा अंदर लेती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ कहीं. फिर उसके बाद इन्होंने तो कहानी में ट्विस्ट ला दिया. ओके व्हाट इज दिस,
0: ओह गॉड. मतलब 2021 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. सो दिस 25 ईयर ओल्ड इंडोनेशियन वुमन जिसका नाम था सिटी ज़ायना, शी मेड ग्लोबल हेडलाइंस उस टाइम पर, और ये खबर दोबारा से फॉर सम रीजन हैज बीन अराउंड. सो आई थॉट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट. तो इसमें क्या था, only said what I said just now, ki there was a gust of wind that entered her belly and then uska pet ekdam se bada ho gaya and ek ghante ke baad she gave birth to a girl. So ye baat medical reality ki taraf jab gayi to मैंने कहा थैंक गॉड, हमारा पेट तो पूरे टाइम मोटा होता है बट एक घंटे बाद वी डोंट कीप डिलीवरिंग, राइट. इट्स अ वेरी वेरी रेयर एंड अ वेरी स्टेल्थ फिनोमेना कहते हैं, जिसमें कि औरतें जो होती हैं दे आर नॉट अवेयर कि दे आर प्रेग्नेंट. सो इट हैपन्स समटाइम्स, राइट, क्योंकि उनकी बॉडी में हर चीज नॉर्मल चलती रहती है. दे डोंट हैव एनी सिकनेस, दे नथिंग इररेग्युलर, नथिंग एट ऑल. सो हर चीज बिल्कुल सही चलती रहती है टिल दे एक्चुअली गिव बर्थ. एंड द सेकेंड थिंग इज कि कुछ कंजर्वेटिव कम्युनिटीज में स्टिग्मा होता है ऑफ हैविंग चाइल्ड आउटसाइड ऑफ मैरिज. So women suddenly pretend and make up these stories कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ. So इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड कुछ महीने पहले ही छोड़ के चला गया था एंड ऑब्वियसली लोगों ने ये कहा कि ये उसका है, बट शी डजंट वॉन्ट टू से एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई शी मेड अप द स्टोरी. बट इमेजिन एंड सम पीपल बिलीव ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो द थिंग. तेरा क्या कहना है?
2: बट There was a time जब हमारे यहाँ पे भी बिलीव करते थे ना कि वो जो देखा नहीं था वो टीवी से ऐसे बाबा जी के हाथ से लाइट गई और वहां से बच्चा ऐसे करके पैदा हो गया. अब मैं तो सवाल ये था कि उसको पता नहीं चला कि ये हवा घुसी कहाँ से.
0: हाँ उसने कहा ना मेरी बॉडी में घुस गई, शायद उसने लंबा सांस लिया होगा, योगा कर रही होगी.
2: कहाँ से?
0: ओके आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. हम सुनेंगे अगला गाना. गुड मॉर्निंग,
3: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere anytime the desi way.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: For show timings, check out the Radio Masti app now.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जाएंगे तो क्या क्या पाएंगे, आइए आपको बताया जाए।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Constable का एग्जाम, oh my god, ठुल्ला basically, right?
0: जी जी, मस्ती मैडनेस पे रेडियो कांत्रा आपके साथ। भाई, उत्तर प्रदेश में जब कांस्टेबल के लिए एग्जाम होता है तो कैसे होती है चेकिंग रेणुका? कभी आपने इमेजिन किया है कैसी होती होगी चेकिंग?
2: नहीं, बताइए ना।
0: तो चेकिंग कुछ ऐसी होती है कि मेटल, जब वो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले, बाहर जो है पुलिस खड़ी होती है मेटल डिटेक्टर के साथ, ताकि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया जाए ढंग से, एकदम लाइक थ्रू एंड थ्रू। अब जो मेटल डिटेक्टर, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज गॉन वायरल, जो मेटल डिटेक्टर, अब कहां क्या है कि क्योंकि चीटिंग करने वाले भी काफी यू नो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो वो कहीं पर भी चिट वगैरह छुपा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉट ओनली द फुल, जब फुल बॉडी कह रहे हैं तो हाथ पैर ये तो है, पैंट के अंदर ऐसे मेटल डिटेक्टर घुसा घुसा के भी उन्होंने पूरा चेक किया। ये था इस बंदे का मेटल डिटेक्टर चेक, ठीक है। फिर अगला बंदा जब आया, भाई सिर्फ पैंट में नहीं, फिर वही सेम मेटल डिटेक्टर अगले बंदे के मुंह में घुसेड़ के चेक किया जा रहा है। वही सेम मेटल डिटेक्टर ऐसे करके सबकी चेकिंग चल रही है। जी जी,
2: ओह माय गॉड, सोच तू, सोच मैं
0: गाना, मैं वही सोच कही तो आ गया मेरा।
2: But why did they have to do that? मतलब तू सोच।
0: I mean, if I could only tell them कि एक word hygiene, I'm sure उन्होंने सुना नहीं होगा, but then उसका एक हिंदी word भी आता है, लेकिन तो सर थोड़ा सा तो मतलब सोच लेते हैं।
2: थोड़ा सा तो मतलब imagine, ये तो लंबा सा metal detector आपकी pant के अंदर जा रहा है और फिर उसके बाद वो आपके कपड़ों के अंदर ऊपर और फिर मुंह में भी, मुंह में क्या छुपा के लेके जा रहे हैं मेटल की उनको डालने की जरूरत है?
0: बट वही ना, यू नेवर नो आजकल कहां कहां से कैसे कैसे चीजें लीक हो रही है। कोई ये आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है,
2: दीज आर जस्ट,
0: ऐसी दुनिया है,
2: दीज आर चीप थ्रिल्स ऑफ दोज पीपल जो एग्जाम ले रहे थे, चीप थ्रिल्स, ओके, उनको मजे आ रहे थे करने में कि रोक भी नहीं सकते और मजे भी बहुत आ रहे हैं।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एक जबरदस्त कहानी है।
2: और टाइटल क्या है फिल्म का?
1: वेलकम टू द जंगल।
3: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
4: दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, शक्ति एंड अक्षय कुमार।
3: From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
5: Welcome to the jungle.
3: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
6: Trailer khatam, paisa hajam.

0: लायन सिटी चैलेंज की बात करना चाह रहे हैं हम इस टाइम पर, और हम पूछना चाह रहे हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक हमें नहीं लिख के भेजा है द लायन सिटी चैलेंज। जी हाँ,
1: आर यू रेडी?
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: This is your chance to let everybody know कि ये जो आप updated रहते हो सिर्फ ऐसे ही नहीं, there's a reason behind it and everyone should be like that. क्या आपने किया? LION type करके हमें भेजो and then करो यार, we are waiting over here. फिर करते हैं, फिर देखते हैं, और बिल्कुल शानदार आपको वो मौका जरूर मिलेगा। हमें तो पूरा यकीन है, आपको अपने ऊपर यकीन है कि नहीं, that you have to tell us.
0: तो एक बात पक्की है, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग ना बैठ के टीवी पे गेम शोज देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन तब सोचते हैं यार मैं होता ना वहां पर इतना कमा लेता, यहाँ होता ना मैं इतना कुछ हो जाता, इतना कुछ जीत जाता, लेकिन जब ये मौका इन्हें दिया जा रहा है तो तब ये छुप के बैठे हुए हैं पीछे पीछे और नहीं लिख रहे हैं हमको। सो वेल फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने हमको भेज दिया है लायन लिख के, थैंक यू वेरी मच। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे हैं तो हमको जरूर बताइएगा। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आप हमें देंगे, और उसके अलावा अ लिटिल स्मॉल एप्लीकेशन फी, जी हाँ पार्टिसिपेंट फी, वो दोनों की दोनों चीजें खत्म करके हमको भेज दो और फिर तैयार हो जाओ अपना हेयर कट वगैरह करा करू के कि भाई अब तो कैमरे पे आना है, अच्छी छोटी मोटी बात नहीं है, सब देखेंगे। तो ये है आपका काम, ऑल यू हैव टू डू इज 9151-8963 पर सेंड अस द वर्ड लायन एंड देन ऑब्वियसली वी विल सी यू ऑन द सेट्स। हम छोटी उंगली पर नहीं, हम पांचों उंगलियों पर नचाएंगे आपको, आइए तो सही हमारे सामने। रेडियो मस्ती 24/7 द लायन सिटी चैलेंज अवेट्स यू। फिलहाल के लिए अगला गाना कमिंग अप और हम मिलेंगे आपको अगले घंटे, कहीं जाना मत।

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस। जी हाँ, फ्राइडे सुबह का हमारा ये खास शो, जो आप लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि हम बिल्कुल रोके नहीं, और हम भी नहीं रोक रहे, ठीक है, हमें भी मजे आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसका रिपीट शो सुन रहे हो ऑनकोर, देन इट इज सैटरडे इवनिंग और इस समय 7 बज रहे हैं, है ना।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Points कमाती हुई रेनुका, खबर देती हुई भी रेनुका।
0: बस तुम तो सिर्फ बैठो, हर कुछ करती हुई रेनुका, यही तो मैं बोल रही हूँ।
2: Friday. बॉस फ्राइडे,
0: पता है फ्राइडे मैं ही काम करती हूँ। एनीवे, तो अब यहाँ पर ये बात कर रही थी मैं कि भाई एक तनिष्क का जो शोरूम है गाजियाबाद में, वहाँ पर 4 करोड़ के, हाँ इसीलिए तो बोला नहीं जा रहा, 4 करोड़ का हाइस्ट, ठीक है, वो भी 25 मिनट में सारा का सारा लेके भाग गया। अब यू नो दिस इज गाय हु जॉइंड एज अ सेल्स पर्सन इस शोरूम में 1.5 महीना पहले, ठीक है, नितिन वर्मा। अब नितिन वर्मा ने देखा कि भैया गहने

0: डायमंड है, गोल्ड है, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। तो उसने बड़े प्यार से सबके साथ दोस्ती करी और फिर एक महीने के बाद में अनाउंस किया कि उसकी शादी तय हो गई है। अब शादी तय हो गई है तो ही वांटेड टू थ्रो अ पार्टी, तो उसने कहा मैं आप सब लोगों के लिए पार्टी करूंगा, यहीं पर शोरूम में ही कर लेंगे पार्टी, कहीं आने की जरूरत नहीं है, लेट्स कंटिन्यू दिस इवनिंग, ठीक है। तो वो अपनी पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बहुत सारा उसने शराब पिला दी टू द पर्सन जिसके पास मेन जो सारे महंगे वाले गहने थे उसकी चाबी रहती थी। और फिर उसको कहता है चल मैं तेरे को घर छोड़ाऊं, घर छोड़ने के लिए जाने लगा तो उसके बैग में से चाबी वो भी निकाल ली और फिर वापस आया दुकान पे। अब तक इसको ये पता लग गया था कि कोई अलार्म सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हेड ऑफिस कैमरा देखता है सीसीटीवी जो भी जहां भी लगा हुआ था। सो इसने अपना 25 मिनट लगा के एक अकम्प्लिस के साथ में पूरा का पूरा उड़ाया सब कुछ, 4 करोड़ की ज्वेलरी मार्केट में बेचनी भी शुरू कर दी है कह के कि मेडिकल के लिए कुछ कुछ चाहिए, पैसे चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे जो ये हेड ऑफिस के लोग थे उन्होंने देखा भी नहीं, अलार्म सिस्टम चला भी नहीं उनका कि भैया कोई घूम रहा है रात को वहां पर 25 मिनट। फिर पुलिस ने जाके सीसीटीवी देखा, पता लगा और फिर ये पकड़ा गया। लेकिन मतलब बंदे की हिम्मत देखो, हिम्मत क्या कहती हो,
1: हिम्मत तो सही है, ही वाज नॉट थरो रेणुका।
0: हाँ
1: उसको तो पता होना चाहिए ना, इतने महीने उसने काम किया है सेल्स पर्सन, उसको पता नहीं, इसने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर शोरूम खोल के रखा है तो कुछ ना कुछ तो कहीं तो सीसीटीवी का सिस्टम होगा ही ना,
0: कुछ तो होगा। इतना भी मतलब टाइटन का, टाइटन नहीं,
1: ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे। हाँ
0: तनिष्क की बात हो रही है यार, कोई मजाक है, कोई दुकान थोड़े कोने की, तो मतलब भी तो बुद्धू बना हुआ ना फिर।
2: चलाई जाने
0: कहते हैं ना, चोरों को भी अकल तो बहुत जरूरी है भाई।
1: हमारे हालात मस्ती मैडनेस करते करते कैसे हो गए हैं रेणुका, हम देखो कैसी कैसी चीजों को नोटिस करने लगे कि he was not thorough in his plan।
0: अगली बार ठीक से करना, हम बल्कि बता रहे उसको।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हो आप उसको एडमिट कर लो, क्या पता वो वायरल हो जाए.
3: आई एग्री.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. गैस
3: नहीं आता तो नहीं आता, हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है. रेडियो मस्ती 24/7 इस पूरे के पूरे शो में 3 घंटे बॉलीवुड का खबर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता. बताने में क्या है. हाँ बताओ
2: भाई. कुछ ऐसा है कि टोक्यो का सो क्या होता है कि मैं पहले क्विक ये चीज बताना चाहती हूँ. ये जो आप इंस्टाग्राम और ये सारे वीडियोस देखते हैं ना जहाँ पे प्रॉपर्टी में दिखाते हैं कि जहां जहां ये बंदा वॉक कर रहा है वो दरवाजा पहले से ही खुल जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, हाउ दीज वीडियोस आर बेसिकली टेकन. सो देयर इज ऑलवेज दिस एक बंदा होता है जिसने ग्रीन सूट पहन के रखा होता है. इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन स्क्रीन. सो वेर एवर ही गोज दैट बंदा नीचे झुक के दरवाजा खोल रहा है एंड एवरीथिंग. यू कैन नॉट सी बिकॉज इट्स ऑल देन वीडियो इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग व्हिच ब्रिंग्स एवरीथिंग टू लाइफ लाइक दैट. अब ये जो हमारे भाई साहब थे इन्होंने 7 मिलियन का ये पूरा एक अपार्टमेंट दिखा रहे हैं. अब इस अपार्टमेंट को इन्होंने वैसे ही किया, ग्रीन स्क्रीन पहनाकर कपड़े पहनाकर एक बंदा नीचे खोल रहा है. अब वो कहता है कि यहां तक तो मैंने कर लिया, अब ये ग्रीन कपड़े वाले बंदे को एडिट करके एक ट्रांसपेरेंट इनविजिबल कैसे करते हैं ये मैं मुझे नहीं पता कैसे करना है. He posted it like that only. So now the video shows that this green colored guy going and opening the doors and you know doing everything as it is. And he has written in the post, I don't know how to edit the green guy, so here it is. Posted it like that.
3: This is so funny. This is like हमने कोर्स बीच में छोड़ दिया था और फिर हमें आधा ही आता खाना बनाना, बाकी का खाना जो कच्चा पक्का है बाकी आप ऐसे ही खा लो. That is so cool. But it's being so honest, right? इसमें क्या गलत है?
2: Yeah. And it went viral. Like everybody is like in splits and loving ki. And it's looking so funny because this guy has no face. He's just wearing this green man is just going and opening and doing all those things.
3: See, eventually the target was to market it successfully and to make it viral, right? And that target was achieved. Uske beech mein kya kiya, janbujh ke kiya, nahi kiya, is a different story altogether. Kya baat hai? I like it. Antra, hum bhi aadha show chhod ke chale jaye. तुझे क्या लगता है?
2: हम आधे सीक्रेट तो अपने ऐसे आउट कर देते हैं कि 10 गाना नंबर 10 के बाद ही चले जाते.
3: हाँ चले जाते. मैं नहीं बता रही.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेंटल एगनी, हरासमेंट, अवॉइडेबल हार्डशिप, परसिस्टेंट इश्यूज फेस्ड बाय दिस पर्सन, ऐसी ऐसी चीजों के पीछे जो लोग नोट छाप रहे हैं ना आजकल. हमने शो की शुरुआत में बताया था अबाउट दिस अंकल एंड आंटी जो अमेरिकन एयरलाइंस से जा रहे थे और उनको 2.2 लाख मिले क्योंकि उनकी फ्लाइट डिले हो गई और उनको कितनी मेंटल एगनी हुई. और अब मैं बताने वाली हूँ चंडीगढ़ में एक औरत जिसने एक नई मर्सिडीज बेंस GLC 300 4MATIC SUV खरीदी थी, ठीक है, और उसका AC ना चलने की वजह से 77 लाख की जो गाड़ी थी, है ना, उसने उसको मेंटल एगनी पहुंचाई. एंड ऑफ कोर्स शी वन द केस.
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैन.
2: अंतरा बहुत परेशान है, बोलो पहले तुम.
4: टॉपर होना भी आसान काम होता है नहीं ना, क्योंकि फिर सारी उम्मीद टॉपर से वैसी वाली की जाती है कि अरे एक अगर किसी, आप कभी भी देख लो किसी भी टॉपर का, अगर कभी किसी चीज में उसके कम मार्क्स आ जाए भाई, ऐसा मतलब तांडव उनके घर में और पूरे मोहल्ले में होता है कि ये कैसे हो कोई हो. तो इट्स लाइक द मर्सिडीज, मार्क की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि तेरा AC नहीं चल रहा.
2: हाँ,
4: है तेरा AC नहीं चल रहा,
2: बिल्कुल
4: तेरा AC नहीं चल रहा.
2: अमीरों को मेंटल एग्नी भी ऐसी चीजों पे होती है ना, क्या करे जी,
4: क्या करे, उनकी थोड़ी ना गलती है, उनकी आदतें ऐसे करा रखी है, फिर क्या आप क्या ही बोलोगे.
2: तो मुझे एक बहुत अमीर आदमी ने एक बार एक ज्ञान दिया था कि अमीरों के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, सामान होता है, एवरीथिंग, लेकिन उनके पास एक और ऐसी चीज होती है जो बड़ी मुश्किल से कटती है और वो है टाइम. इसीलिए वो इन चीजों को ढूंढते हैं कि टाइम कैसे काटा जाए. इसीलिए वो उन लोगों को अपने साथ लगा के रखते हैं जिनको उनके पैसे चाहिए और वो लोग उनको टाइम देने को तैयार होते हैं. तो दैट इज द रीजन, जब आप किसी अमीर इंसान के पास पैसा लेने के लिए जाओ तो रिमेम्बर कि वो आपका टाइम भी बहुत सारा लेगा क्योंकि उसके पास बहुत है, तुम्हारे पास कम है. जलेबी बेबी कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन इस औरत
4: ने नहीं देगी है, शी शुड नॉट लेट मी स्पीक नाउ. इट्स वेरी बैड दैट शी नोज दैट ये ना इसकी स्माइल साइडी लग रही है, गाना चला देते हैं अगला.
2: वो ठीक है, अगर तू मुझे अमीर बोलने वाली है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं अमीर नहीं हूँ, ओनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो इस औरत को 1 लाख रुपए मिले एज कॉम्पनसेशन जब उसने 2 साल तक केस लड़ा कंज्यूमर डिस्प्यूट में. ओके, और फिर उसके बाद 35,000,
4: ये ज्यादा हो गया.
2: बहुत ज्यादा,
4: ये इट्स नॉट अ फेयर डील.
2: आई एग्री. तेरे को क्या लगता है, ज्यादा मिलना चाहिए था, 77 लाख की कार थी.
4: हाँ, तो उतना 2 साल के बाद 1 लाख रुपए मिला रेनू का, मैथ सही नहीं है.
2: मैं सोच रही हूँ उसको दिए ही क्यों, कुछ नहीं हो सकता.

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle camp madness, this entertainer promises a rollercoaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle!
2: Hurry, book your tickets now! Welcome to the Jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs, Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीन वर्ड्स मतलब कि एक रीजन है जिसकी वजह से इसको ऐसे कहा जाता है, और कहा जाता है कि हर चीज की एक जगह होती है।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज
2: हर चीज, हर इंसान, हर काम का एक वक्त होता है, एक सही वक्त होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस समय मस्ती मैडनेस का सही वक्त।
0: अब बात ये आती है कि आप बंदे या बंदी की क्रिएटिविटी या फिर उसका काम देखो या उस वो कैसे ड्रेसअप होके आया है वो देखो। आप क्या कहते हो वैसे?
2: दोनों,
0: विच वुड यू चूज? लाइक अगर आपका जो आपको जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं इज लाइक रियली गुड एट हिज और हर वर्क बट हैज ड्रेस्ड अप लाइक शैबिली, नॉट टेकन मच एफर्ट अबाउट इट, या फिर कुछ ऐसा बहुत ही रिवीलिंग सा पहन के आ गए, व्हाट वुड यू?
2: I think the first thing I would do is look at the substance and not the कपड़े वपड़े। बाद में जाके बता सकते हैं उनको कि क्या करना है, पहले दिमाग तो देखो, because वो ज़्यादा rare है, right?
0: So भविष्या जैन करके है, उन्होंने LinkedIn पे पोस्ट किया कि she was interviewing candidates एक creative role के लिए। तो ये एक candidate इनके पास interview के लिए आई जिनका she was wearing this tight crop top over the jeans and the crop top के ऊपर white color का top था, उस पे लिखा हुआ था I am too hot for a job।
2: ये पहन के इंटरव्यू पे आई
0: जी। So she said that I rejected her even before the conversation began, not because she showed skin or did not wear formals, but because the t-shirt read I am too hot for a job।
2: Well, I still feel that it was just a statement. It was maybe a conversation starter. Maybe the person thought it's a creative job, right? And creative job mein she was being creative while going for the interview. So thoda sa us insaan ko samajhna bahut zaruri tha.
0: My question comes from there that there is a set of people who are sitting on those chairs jahan pe unko lagta hai ki bhai pehle to tum dhang ke kapde pehen ke aao.
2: But I have to admit Antra that hamari ek bahut एक जॉक जो आई वुड से टिल डेट शायद मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी जॉक थी, वो इंटरव्यू के लिए जब आई थी तो उसने चप्पल पहनी हुई थी और काफ़ी शैबली ड्रेस थी। मैं थोड़ी सी हिल गई थी बिकॉज मैं बहुत ऐसे देख रही थी कि यार कोई इंटरव्यू पे ऐसे कैसे आ सकता है। फिर मुझे समझाया गया था कि क्रिएटिव लोग हैं, इनको जज मत करो, इनको इनकी कैपेबिलिटी से जज करो, एंड आई केप्ट दैट फॉर एवर बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ दे आर, सो इट्स ओके, जस्ट गिव देम दैट फ्रीडम, यू नो। कपड़े वपड़े डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द कॉन्टेंट, राइट?
0: कॉन्टेंट,
2: क्या बात है, देखो मैं पास हो गई आज, तो लड़की ने मुझे पास कर दिया
0: एकदम, मैं तो इंप्रेस हो गई,
2: बॉस की इज्जत बढ़ गई आज बॉस की इज्जत बढ़ गई आज, तू शाम का 5 मिनट का शो कर ले, ठीक है, चलो ओके।
0: टीना बुला रही है मेरे को, ओके, अब भी याद आया, उसने ना मुझे कई काम बता रखे हैं मेरे किए नहीं है। When I want you, when I need you, boy, you know that I know how to get you. When I want you.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: और देखते ही देखते बस 10 बजने ही वाले हैं और मुझे लग रहा है कि आज हमने इतनी सारी बातें करी। और बाय द वे आज तो फिल्म रिलीज हो गई है भाई, जंगल पे वेलकम। वेलकम चलना अंतरा, चलना देख कर आए।
4: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है। मैं ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहती हूँ
3: जी,
4: ऑनेस्टली एकदम, कि आपको क्या लगता है कि मूवी कैसी होगी?
3: देखो नमक खाया है, मूवी बहुत अच्छी होगी, सीधी सी बात है। हम तो हमारा बिल्कुल रिव्यू जो है बेस्ड होता है ऑन वो क्लाइंट हमारा है कि नहीं है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जब जब क्लाइंट का प्रमोशन खत्म हो जाए फिर हम जाके बताते हैं कि हमें क्या फील है। सो एज ऑफ नाउ द मूवी इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट, बॉडी स्टार स्टडेड,
4: वेरी वेरी नाइस, यू मस्ट गो एंड वॉच
3: जी। अच्छा एक्चुअली भूत बंगला, जिसके बारे में आई वॉज वेरी श्योर, ऑल दो हमने प्रमोट करी थी वो फिल्म भी, आई वॉज वेरी श्योर एट दैट टाइम। लेकिन अब जब सब लोग देख रहे हैं ना नेटफ्लिक्स पे, जब से वो आई है तब से लोग बोल रहे हैं यार ये तो मूवी बड़े पर्दे पर देखने के बड़े मजे आते हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन।
4: But then I think so. This is going to be fun.
3: Because yes.
4: एक तो because of the ensemble star cast, I am totally into it. सही है. एक साथ एक स्क्रीन पे सारे एकदम सही वाले चेहरे दिख जाएंगे.
3: बिल्कुल.
4: I'm looking forward to it.
3: I am too. So आज शाम को वहाँ पर चलते हैं और देखकर आते हैं 8 बजे का शो. अच्छा दूसरी बात, अभी हाल ही में एक अनिल कपूर का इंटरव्यू हो रहा था. I know we don't talk Bollywood here, but this is something which we must. अनिल कपूर का इंटरव्यू था, रिपब्लिक चैनल पर था, एंड यू नो अर्नब ने उससे पूछा ये बात कि भाई अगर तुम्हें एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कहना चाहोगे। इतना बोरिंग जवाब दिया अनिल कपूर ने कि मैं ना आने का, यार इसके डायलॉग राइटर नहीं है तो मतलब ये एक जवाब भी नहीं दे सकता ढंग का। ही सेड मैं ना प्यार बोलूंगा सबको, प्यार करो आपस में, बिकॉज देयर इज अ डर्थ ऑफ। हाँ एग्जैक्टली, इट वॉज अ है आंसर। मैं नॉर्मली लिखती नहीं हूँ कॉमेंट्स ऐसी ऐसी चीजों पर, बट आई एक्चुअली मेड द एफर्ट टू राइट ओवर देयर व्हाट अ डर रिस्पॉन्स। आई विश आई कुड सी अर्नब्स फेस इंस्टेड ऑफ हिज फेस राइट नाउ, यू नो कम ऑन।
4: क्या कर दिया सर, मतलब नायक मूवी का पूरा वही उतार दिया हमारा नशा।
3: एग्जैक्टली, उसने इसीलिए पूछा था बिकॉज इसने एक्चुअली एक फिल्म में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना था। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। पता आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो कोई नहीं, पूरे पूरे दिन वही शोज चलते हैं, सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 पर, और शाम को मस्ती टॉप चार्ट्स पर आना मत भूलना। इन केस दिस इज द एनकोर यू लिसनिंग, तो संडे शाम को होता है मस्ती टॉप चार्ट्स का एनकोर। आय हाय,
4: ओ माय गॉड यार, मतलब
3: बाय।

दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
0: एक्साइटेड
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge meets

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

चार्ट टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009. The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
0: Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aap.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: Oh, I hate making love songs.
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

securing future, doubt, truth, love, uncertainty.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.